सिंपली मैसेज करने का, सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 1 पे। कमेंट करने के लिए हमारा पेज है GFM88 और जी लालकाना FM88.8, ठीक है। ये सर्च करेंगे फेसबुक पे एंड गूगल पे भी, सो आपको दोनों जगहों पे ही सर्च करने से हमारा पेज मिल जाएगा। पेज पे आने के बाद आपको लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग मिलेगी जो कि होगी जिंदगी गुजार रहेगी, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग मुझे और ज्वाइन हो सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं मुझे इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा हम चलेंगे आगे और सुपर वाइट प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम, सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर, और यही नहीं सुपर वाइट का विटामिन सी फेस वॉश, सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश और सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, सुपर वाइट का राइस फेस वॉश। इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी खासी रेंज जो कि आपको सुपर वाइट अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये अपने क्वालिटी और मयार पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज किए बगैर आपकी खूबसूरती के लिए इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: GA FM 88
3: सिंध की आवाज.
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खा रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में। डार्क स्पॉट्स एक्नी स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग ए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक निखार जो बेहतरीन इंतखाब। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगाज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
3: खुश ऐं बीरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट, पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि 4 रंग जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं 4 रंग जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ 3 ॾींहनि में। जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट, उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: लाड़काने वासन लाइ खुशख़बरी, डॉक्टर अजीत कुमार MBBS FCPS डर्माटोलॉजी चमड़ीअ जे बीमारियुनि जो माहिर हिते मोहिड़ा।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

ओके, इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे एंड सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय एक्सेस मेडिक, सुपर वाइट प्रोडक्ट्स जो कि सुपर से भी ऊपर हैं और आपकी ब्यूटी को भी सुपर से ऊपर लेके जाएंगे। बेफिक्र हो जाएं और सुपर से ऊपर लेके जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स जो हैं बाय करने पड़ेंगे एंड देन जब आप इनको बाय कर लेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा खूबसूरत हैं और कितने ही ज्यादा हसीन हैं। तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं जिसमें से ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम और उसके साथ ऑयल कंट्रोल फेस वॉश जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तमाम उन लोगों के लिए जिसकी स्किन टाइप है ऑयली और ऑयल को जो है वो फेस कर रहे होते हैं, गर्मियां गुजार ली हैं उसके साथ सर्दियां आ रही हैं, फेस कभी भी फ्रेश नहीं दिखता है आपके जो एक्सेसिव ऑयल होता है फेस का उसकी वजह से, तो उसकी वजह से होता यह है कि फेस के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल आने लगता है और फेस के ऊपर जब ऑयल आता है तो फेस कभी भी फ्रेश नहीं लगता। आप उस चाहे उसको जितना धोएं थोड़ी देर बाद आपका फेस ऑयली हो ही जाता है। ठीक है, तो अगर फेस को फ्रेश दिखाना चाहते हैं तो सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश ये जरूर यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज है तो सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश जिनमें जितनी भी बार फेस को वॉश करें आपने सिर्फ और सिर्फ सुपर वाइट के ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से ही करना है। और जब आप रात को सोने लगे तो रात को सोने से पहले एक दफा फिर से फेस वॉश करने के बाद सुपर वाइट वालों की सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल क्रीम आप लोगों ने अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आप लोग देखेंगे कि खूबसूरती इतनी ज्यादा है आपके पास और पहले ही तीन दिन में आप वाजे रिजल्ट देखेंगे। डाउन कॉम्प्लेक्शन है फेयर हो जाएगा, एक्नी है खत्म होने लगेगी, एक्नी के निशान है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, पिगमेंटेशन है, छाइयां है, टैनिंग है, सब चला जाएगा। ठीक है, विजिबल रिजल्ट देखने के लिए तीन दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और पहले ही हफ्ते में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस रिजल्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल क्रीम को। और ये क्रीम जो है ना आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनके फेस पे ये बहुत ज्यादा इश्यू रहता है और यही वजह होती है कि जो आपका फेस है वो कभी भी फ्रेश नहीं दिखता। वही बात आ जाती है वहीं पे। सो अगर इसके रिजल्ट को और भी ज्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो इसके रिजल्ट को और भी ज्यादा इन्हेंस करने के लिए सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर वो ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, किसमें ऐड करेंगे? ब्यूटी क्रीम में, सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम में सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, जब दोनों चीजें यकजा हो जाएंगी तो उसको स्टोर कर लेंगे, रात को सोने से पहले अप्लाई करेंगे। ठीक है, डबल ट्रिपल और उससे भी कई ज्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।

क्लिंजिंग करते हुए जो क्वांटिटी आप अपने फेस के ऊपर लगाते हैं क्लिंजर की, उसमें आप लोगों ने एक चुटकी ब्यूटी सीरम बूस्टर को ऐड कर लेना है, ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी। और सेम फिर उसके बाद जब स्क्रबिंग का जो वो है स्टेप है वो आता है, तो आप लोगों ने फिर उसके अंदर एक पिंच दोबारा ऐड कर देनी है, यानी कि आप इसको हर स्टेप में ऐड करके अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ अगर आप ब्लीच क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट को दुगना करने के लिए बहुत सारी चीजें जो है आप उसमें ऐड करते हैं। कुछ भी ऐड मत करें, सिंपली आप ब्लीच क्रीम लें। और अगर आप सुपर वाइट की हल्दी चंदन ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो क्या ही बात है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर, ठीक है, ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी क्वांटिटी आप लोगों ने लेनी है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है, लिक्विड को और जो पाउडर है और जो ब्यूटी सीरम बूस्टर है उसको, और मिक्स करने के बाद जिस तरीके से आप ब्लीच करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और रिजल्ट आप देखेंगे विजिबल कि आपके जो ब्लीच के रिजल्ट है ना कितने ज्यादा अमेजिंग और कितने ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। और प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग रابطہ कर सकते हैं, सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर है 03147744462। सखर और लाड़खाना वाले डायल करेंगे 03147544462। और हैदराबाद वाले मुमताज हसन खान से राब्ता करेंगे 03702568321।

0: हेलो
1: हेलो, किसके तावन से पैगाम है?
0: तावन से बाजी ये याद नहीं है बाजी, जिंदगी उजाले प्रोग्राम बाजी।
1: ओके, सुपर वाई के प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं प्रोग्राम में बता रही हूँ?
0: जी जी बिल्कुल, क्या इस्तेमाल करेंगे बाजी?
1: कौन से प्रोडक्ट है, नाम लेके बताए ना, तभी तो ले पाएंगे
0: बाजी। इतना याद नहीं प्रोग्राम सुनते हैं तो आपको बताएंगे।
1: चले जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे
0: बाजी? आपको गाना सुनाना चाहता हूँ।
1: सुना दें।
0: एक सोन में जी नजर में आए, नजर में आए, आ रहा दो दूजे शहर में आए।
1: ओके, ये वाला गाना आपने पहले भी सुनाया था ना?
0: जी बाजी,
1: पहले भी सुनाया था ना ये गाना?
0: जी, बहुत दिनों के बाद बता रहा हूँ बाजी।
1: चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। और कोशिश किया करें कि जो गाना आप एक बार गा देना वो दोबारा मत गाया करें। तो भाई ने दो या तीन दिन पहले कॉल की थी आई गेस, सो इन्होंने ये वाला गाना सुनाया था और मैंने प्ले भी किया था। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर, हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
0: बाजी आपसे सवाल मौका से बात कर रहा हूँ, क्या ठीक होता है? ठीक है
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं प्रोग्राम सुन रहे हैं?
0: जी जी सुन रहा हूँ।
1: ओके, कौन से प्रोग्राम है?
0: जिंदगी गुजार है सुपर में कॉस्मेटिक।
1: ओके जी, सुपर वाई कॉस्मेटिक्स। और मुझे बताएं कि हाँ, सुपर वाई के प्रोडक्ट्स कब यूज कर रहे हैं?
0: बाजी बस यूज करूंगा मैं।
1: ओके, कब करेंगे, क्या यूज करेंगे सुपर वाइट वालों का?
0: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम।
1: ओके, जरूर यूज कीजिएगा। गाना सुना दें जल्दी से।
0: गाना अच्छा अलाउद्दीन की आवाज में।
1: हाँ जी,
0: सब के मनाए सत नाराज वाही, सब के मनाए सत नाराज वाही, तेरी गलती थी यार नखे और गनाए सत नाराज वाही।
1: ओके, किसको डेडिकेट कर रहे हैं
0: आप? लखनऊ में ढेर नमस्कार, लंदन गवार में बेटर संभाली जब भी समय मेरी तरफ से मैंने तुम्हारा
1: बुलाया। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये गाना प्ले कर रहे हैं जी आपके लिए, इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाई प्रोडक्ट्स। सुपर वाई प्रोडक्ट्स बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स, और अक्सर कॉस्मेटिक्स वालों का हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वालों के लिए, डायल करें 03147754462। हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03702568।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by D Skin.
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream असली ग्लो हर निया जोशो A product by Biocon International Pakistan।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News
4: brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream A product by Aksa Cosmetics Pakistan।
5: खां पिशावर विंदे मुल्तान वट हादसे जो शिकार थी आहे। ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफिर सवार हुआ। रेलवे पारां हादसे में पंज मुसाफिरन जे फौत थियण जी तस्दीक थी आहे। ट्रेक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते ॾुख जो इज़हार कयो वियो। ज़ख़्मीन खे बहितरीन तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत कई।

0: केपीअ में दहशतगर्दीअ जे वाकियनि में गणतीअ जोगी वाह थी वई। खैबर पख्तूनख्वा में सदर आइन तहत एमरजेंसी लॻाई। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारण चयो आहे त आइन रियासत निज़ाम ऐं मुख़्तलिफ़ हालतुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ तरीक़ेकार जो तयन करे थो। शहरनि जे जाननि जो तहफ़ुज़ करण हुकूमत जी ज़िमेवारी आहे।
1: सेनेट ऐं क़ौमी असेंबलीअ जा इजलास अॼु थींदा। पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पारां इजलासनि खां पहिरीं पार्लियामेंटी पार्टियुनि जा इजलास सडियल। पीटीआई जे पार्लियामेंटी पार्टी बि अॼु गॾिजाणी कंदी। पीपी ऐं नून लीग पार्लियामेंट्रीज खे केपी जी सूरतहाल ऐं ख़लकदमनि बाबति एतमाद में वठंदी। पीटीआई पारां एहतजाजी हिकमत अमली जोड़ी वेंदी।

चीन जे दौरे ते मौजूद वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जे वफ़द सां गॾु चीन जे शहर वुहान में अॼु HBS ज़ेड कंपनी आमद कराचीअ में K4 पाइप लाइन विछाइण ऐं सखर बिरा जे दरनि जी तब्दीलीअ वारे मनसूबे ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। चीनी सीड़पकारनि पारां सिंध में सीड़पकारी करण ते दिलचस्पी ज़ाहिर, मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत कराचीअ में पाइप लाइन विछाइण जो कम तमामु जल्द शुरू करण वारी आहे। सिंध में पब्लिक प्राइवेट भाईवारीअ तहत बहितरीन कम थी रहियो आहे, जंहिंखे अॻिते वधायो वेंदो।

0: फैज़गंज वेझो वेहो वाह खे 24 कलाकनि दौरान बियो घारो फसल पाणी हेठि अची वियो। गुज़िरियल ॾींहुं पहल घारे खां थोरो अॻियां R D 78 वटि 20 फुट घारो पियो। घारे सबबि वण ऐं कमंद समेत ॿिया फसल पाणी हेठि अची विया। ॻोठाणनि पारां घारो बंदि करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91।

0: 91.6
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा।
2: फिजिशियन सीनियर लेक्चरर।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6।
1: नहीं होंगे और इसके अलावा फटी हुई एड़ियों पे खास तौर पे खास तौर पे फटी हुई एड़ियां जो कि सर्दियों के मौसम में हो जाती हैं, फटी हुई एड़ियों पे अप्लाई कर सकते हैं, पैरों पे लगा सकते हैं, क्योंकि खास कर जो है ना पैर आपके बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में। सर्दी आते साथ ही पैर का ड्राई होना लाजमी है, तो पैरों पे अप्लाई करें एड़ियों के साथ साथ जो है ना आप लोग पूरे पांव पे अप्लाई करें, और इसके अलावा एज ए बाम आप इसको अप्लाई करें। आप इसको अपनी लैशेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लैशेस भी बहुत ज्यादा जो है ना ड्राई रहती है, तो ड्राई लैशेस पे लगा सकते हैं, आईज पे लगा सकते हैं, आईज के अंदर नहीं आईज के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आईब्रोज पे लगा सकते हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी होती है जिनकी आईब्रोज भी ड्राई हो जाती है, और जब वो आईब्रो पे कोई कलर यूज कर रही होती है तो ड्राइनेस नजर आ रही होती है, तो अगर आप इसको लगा के अपना जो आईब्रो कलर है वो करेंगी तो फिर ये होगा कि आपकी जो आईब्रोज है वो भी ड्राई नहीं होंगी। तो देखिए कितने सारे फायदे हैं एक ही पेट्रोलियम जेली से। और ये जो पेट्रोलियम जेली है ना सुपर वाइट वालों की, ये बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स में आती है, अलग अलग लेमन में आती है, पिंक में आती है, कोकाओ बटर में आती है, और दूसरे बहुत सारे फ्लेवर्स में आती है, तो आप इसको ले सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं।

Beautiful song, और इसके साथ साथ 03 111 3488 और नेक्स्ट कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है. वेरी बैड. हाफिज यूनुस बाबर हमें सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं. एहसन अली बुकटी हमें सुन रहे हैं. सरफराज अली हमें सुन रहे हैं. सरफराज अली गरीब बलोच, थैंक यू. और कमेंट कर रहे हैं सुपर वाइट के प्रोडक्ट और सुपर वाइट के प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने के लिए हेल्प लाइन नंबर नोट डाउन करना बहुत जरूरी है.

कॉल पर नंबर है 03147754462 सखर और लाड़काना वालों के लिए हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03702568321 इसी के साथ एक और सॉन्ग प्ले करते हैं जी और साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स अक्सा कॉस्मेटिक्स.

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अरे न खुश और बेरोनों की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जह में आहिन चार रंग की खूबियों एक कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे एक चामरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर एंड रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उनसा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर अंदाज में एतमाद,
2: मोरो नौशहरो
3: मीरपुर खास
2: लाड़काना
3: सक्खर
2: गूंज रही है हर जगह पर
3: सिंध की आवाज।

इसको खत्म करना चाहते हैं, तो ये सारे इश्यू खत्म होंगे और जो आपकी डिजायर रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी होगी। अच्छा, इसी के साथ हम चेंज करेंगे गाने को और कॉल्स लेंगे आप लोगों की एंड हर।

0: ओके जी कॉलर लेते हैं, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हाफिज लखमीर भाई, कल भी कॉल लगाई थी, मैंने कहा है ना डेली बेसिस पे सेम कॉलर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है,
1: आपका प्रोग्राम
0: है, नहीं शौक से सुने, लेकिन कॉल जो है ना दो दिन बाद लगाए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मजबूरन मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी, तो जब मैंने आपको रूल बता दिया है तो उसको फॉलो करें और डेली बेसिस पे कॉल ना लगाएं। कल भी जब आपने कॉल की तो मैंने बजाय ड्रॉप करने के मैंने आपसे गाना भी सुना, मैंने आपका गाना भी चलाया, तो इस चीज का खास ख्याल रखें आप लोग भी। 03000113488 नेक्स्ट कॉल है। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी कौन कहाँ से?
2: आपसे राष्ट्रीय।
0: ओके जी, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
2: दूसरा मरतबा कॉल कीजिए।
0: ओके, प्रोग्राम सुनते हैं कौन सा है?
2: प्रोग्राम में सुनता हूँ रोजाना, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो ये यहाँ जो स्टेशन आई आपकी ये चैनल आई FM 88 ये नहीं चल रहा, यहाँ
0: कहाँ पे
2: सुन में नहीं आता।
0: अच्छा, कहाँ नहीं चल रहा?
2: ये लाशारी 16 किलोमीटर दूर है मेरे से, लाड़काना।
0: अच्छा, लाड़काना से दूर है?
2: हाँ, 16 किलो।
0: चलिए ठीक है जी, मैं बिल्कुल आपकी जो कॉल भी ड्रॉप हो गई भाई की, खैर आपकी जो कंप्लेन है हमने नोट कर लिए जी, थैंक यू सो मच। कि आप लोग हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी जो नशरियात हैं वो नशर नहीं हो पा रही हैं, थैंक यू। सर मैसेजेस मुझे रिसीव होते जा रहे हैं आप लोगों के, गोल गुल हसन शहर से हैदर बख्श शहर हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अच्छा आर जे सुपरवाइज के प्रोडक्ट तो सारे अच्छे हैं, आई डोंट नो मैंने तो यूज नहीं किए हैं, सखर में एक फैमिली में यूज होते हैं, रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, कौन सी फैमिली है वो? सखर में तो बहुत सारी फैमिलीज में यूज हो रहे होंगे खासतौर पर प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद। और इसके अलावा जी पोइट्री लिखी है जनाब, बहते अश्कों की जबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती, मिले जो प्यार तो कदर कर लेना, मोहब्बत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। वाह वाह वाह, क्या बात है। और इसी के साथ हम आगे चलेंगे जी, और कमेंट भी आप लोगों के बहुत सारे रिसीव होते हैं।

ओके जी, इसी के साथ आगे चलते हैं हम. बाय द वे, जो सॉन्ग इस वक्त ऑन ईयर है स्टे विद मी, ये एक जो वायरल ट्रेंड है AI वीडियो का, जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल और मतलब कि फेमस चल रहा है, तो उसमें ये जो गाना है ना, ये बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा चल रहा होता है. और मैंने बहुत कोशिश की परसों इसको ढूंढने की, और मैंने ढूंढ भी लिया, और सुनने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसको अपना बैकग्राउंड बना लिया.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Light-ish.
0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: बंदरा बंद हो इलाके वासन बुधायो आए तो शाहजेब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो आज जी सिंध वाके जो नोटिस वथन डीआईजी ईस्ट का रिपोर्ट तलब करे वरती आए
6: मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जो समूरियो बोगियो पटड़ी तां लही वयूं छह मुसाफिर फोत थी विया केतरा ही जख्मी थी पिया रहमान बाबा ट्रेन कराची खां पेशावर वेंदे मुल्तान वट हादसे जो शिकार थी आहे ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफिर सवार हुआ रेलवेज पारा हादसे में छह मुसाफिरन जे फोत थियण जी तस्दीक थी आहे ट्रेक बहाल करण जी कोशिशूं जारी आहिनि सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते ॾुख जो इज़हार कयो वियो आहे ज़ख़्मीनि खे बहितरीन तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत कई आहे
5: केपीअ में दहशतगर्दीअ जे वाकियनि में गणतीअ जोगी वाद थी ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में सदर आईन तहत एमरजेंसी लॻाई कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारा चयो आहे त आईन रियासती निज़ाम ऐं मुख़्तलिफ़ हालतुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ तरीक़ेकार जो तइन करे थो शहरनि जे जाननि जो तहफ़ुज़ करणु हुकूमत जी ज़िमेवारी आहे वफ़ाकी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में अमन अमान ऐं हुकमरानी जी सूरताल घणी ख़राब थी चुकी हुई वफ़ाकी हुकूमत जी का बि सियासी एजेंडा नाहे
6: सैनेट ऐं क़ौमी असेंबलीअ जा इजलास अॼु थींदा पीपल्स पार्टीअ ऐं नून लीग पारां इजलासनि खां पहिरियां पार्लियामेंटी पार्टियुनि जा इजलास सॾायल पीटीआई जे पार्लियामेंटी पार्टी बि अॼु गॾिजाणी कंदी पीपी ऐं नून लीग पार्लियामेंट्रीज़ खे केपी जी सूरतहाल ऐं खयल क़दमनि बाबति एतमाद में वठंदी पीटीआई पारां एतिजाज जी हिकमत अमली जोड़ी वेंदी
5: वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह पारां चीनी शहर वान में जदीद टेक्नोलॉजीअ वारनि मुख़्तलिफ़ मर्कज़नि जो दौरो सिंध हुकूमत जो मसनूई ज़िहानत डेटा सेंटर ऐं टेक्निकल तरबियत वारनि शोबनि में सहकार वधाइण जो फ़ैसिलो स्मार्ट गवर्नेंस ऐं मसनूई ज़िहानत खे हथी ॾियण लाइ चीन सां सहकार जी तजवीज़ मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध हुकूमत रुगो टेक्नोलॉजीअ जी ख़रीदारी नथी चाहे मुकमल तरबियत ऐं सहकार जी ख़्वाहिशमंद आहे डिजिटल मईशत लाइ जदीद कंपनियुनि ताईं रसाई ज़रूरी आहे
6: खैरपुर जे शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटीअ में दाख़िलाउनि लाइ एंट्री टेस्ट 4000 खां वधीक उमीदवारनि जी शिरकत यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया एंट्री टेस्ट दौरान कापी रोकण में नाकाम पाबंदी बावजूद शागिर्द टेस्ट दौरान मोबाइल फोन जो सरेआम इस्तेमाल कंदा रहिया सिक्योरिटी इंतिज़ाम सख़्त रहिया
5: मेयड़ बरसा इंडस हाईवे तां अणॼातल शख़्स जो चिचिरियल लाश हथ इस्पताल मुंतकिल सुञाणप न थी सघी
6: हैदराबाद में मदीना टाउन वासी औरतुनि जो पुलिस जे मुबैना ज़ब्तनि ख़िलाफ़ एहतजाज घरनि ते चढ़ाई करे 11 ॼणनि खे गिरफ़्तार करण जो इल्ज़ाम औरतुनि मौजूदु पुलिस बिना कंहिं जवाज़े घर ते चढ़ाई करे महिमान थी आयल 11 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वई आहे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News
3: Brought to you by
4: Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में
3: अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
7: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
8: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
9: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
10: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
9: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
8: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
11: सुपर वाइट, सुपर वाइट, सुपर वाइट।
12: खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताईं सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 03062447।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आम की प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स।

0: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: 88 नेटवर्क
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम
0: नेटवर्क सिंध की आवाज
2: हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो हमें जरूर बताया करें ताकि हमें पता चले कि जितनी भी सुनने वाली समाज है वो सब लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज अपनी खूबसूरती में इजाफा ला चुके हैं ऑलरेडी। ओके जी, अगर आप मर्द हजरात हैं, खवातीन आप सब लोग ही ट्राई कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप लोगों को बताती चलूं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक मेडिकेटेड फार्मूला है। मेडिकेटेड फार्मूला वो होता है जो कि आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है, आपकी जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने मिलकर आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार करी है। लेकिन साथ साथ अगर बात करेंगे भाई इसके अंदर क्या चीजें ऐड की गई है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो कि आप लोगों के चेहरे के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को देती है ऐसा निखार, ऐसी खूबसूरती जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे जैसे आप कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। आपके चेहरे पर जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे या फिर जितने भी क्रेकल्स हैं, रिंकल्स वगैरह हैं, वो चीजें भी खत्म हो जाती हैं, आपके चेहरे की स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाती है और आपको रिजल्ट्स जो मिलते हैं ना अच्छे वाले रिजल्ट्स, परफेक्ट वाले रिजल्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से मिलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को सेफ रख सके, यानी कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत कर सके, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सारे लोग ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बाउंड्रीज रखी गई है कि हाँ लड़कियां लगाएंगी, लड़के नहीं लगाएंगे या लड़के लगाएंगे, लड़कियां नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप चाहे लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी लगा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए आप ऐसा कीजिए, अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप यूज करेंगे तो आपको जनाब इतना प्यारा निखार मिलेगा, इतनी प्यारी जो है ना आपको खूबसूरती मिलेगी। इसका जो नरम और खूबसूरत एहसास है ना आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देता है, आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाती है और अच्छी तरह से आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है। आपकी जल्द की शख्सियत जो है ना वो ऐसा फील होता है कि भाई ताजगी का एहसास हो चुका है, आप हमेशा रिफ्रेश जो है ना वो फील कर रहे होते हैं। आपकी स्किन जब फ्रेश होती है ना तो आपको अच्छा महसूस होता है, आप कहीं जा पाते हैं सुकून से और आपको एक तसल्ली सी होती है कि भाई हमारी स्किन जो है ना अब बड़ी अच्छी है, क्योंकि आपके चेहरे पर कोई भी इस तरह का एक्ने नहीं बचा, कोई भी इस तरह का निशान नहीं बचा, कोई भी रिंकल नहीं बचा। अब आप अपनी उम्र से बहुत छोटे लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं कुछ अच्छा, कुछ अफोर्डेबल और कुछ ऐसा जो कि भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर रहे हैं तो साथ में डी स्किन फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा। ये दोनों चीजें आपको साथ में मिल जाएंगी और साथ में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या ही कमाल के, क्या ही वाओ वाले जो है ना वो रिजल्ट मिलते रहेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को क्लीन रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं तो आपके चेहरे पर जो है ना ग्लो और निखार आना स्टार्ट हो जाता है। आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो भाई अच्छा फील करेगी तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन पर जो प्रॉब्लम्स आ जाती है ना वो भी नहीं आएंगे। तो बिल्कुल अपनी स्किन को अच्छा फील कराइए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाइए और अपनी जरा जो है ना खूबसूरती का स्टैंडर्ड जरा हाई रखा करें। ऐसा नहीं कि आपको जो भी बताया जाता है, जो भी प्रोडक्ट बस आप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाने से जो ऐसा होता है ना कि अगर आप महंगे महंगे फेशियल्स कराने जा रहे हैं और आप लोगों को ऐसा होता है कि भाई फेशियल तो आपने हफ्ते हफ्ते में कराना है या महीने महीने में कराना है, लेकिन ऐसा वाला सीन बना दें कि आप बस मार्केट जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप घर बैठे लगा सकते हैं। डी स्किन क्रीम का ये वाला फायदा आपको मिल रहा है कि एक तो ये मुनासिब पैसों में आपको मिल रही है दूसरा आपका टाइम भी बच रहा है और दूसरा आपको रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो बहुत से भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। उनके अलावा तमाम के जेके नंबर्स बुधाए वन था प्रोग्राम के अंदर, नंबर से तमाम राबतों कंदा राबतों करने का फौरन बाद ही पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा रहो। आई पांजे खूबसूरती जो ख्याल रखो, बाबा जो तमाम रखना तो केर रखो, अगर तमाम पांजे खूबसूरती जो ख्याल न रखना न तो दुनिया भी तमाम की समझती तो तमाम ई आयो बस। भाई अपना ख्याल रखिए, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और अपनी खूबसूरती को सबसे आगे रखा करें। और इनके अलावा अगर तुम प्रोग्राम

ॿुधायो वरी चवंदा बाबा हीअ बि हाणे का सज़ा हुई सो मूंखे ॿुधायो 888-218 फेसबुक ते तव्हां मूंखे ज्वाइन कंदा हलो था तव्हांजा फीडबैक्स बिल्कुल मूंखे मिलनि पिया पैनल ते बि तव्हांजा मैसेजेस आहिनि पर हिते कॉमेंट आहे जी मां जल्दी कॉमेंट इन लाइ पढ़ंदी आहियां वरना तव्हांजा कॉमेंट जेके आहिनि उहो मथे भॼी वेंदा आहिनि सो मोहम्मद ज़मान भाई आहे मेरे साथ मौजूद कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम आई स्वीट बुआ जी आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारे भाई अच्छा हिदायतुल्लाह हाँ वैसे मुझे ज्यादा याद नहीं है और किशोर भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम मुंजा खूबसूरत अदा वालेकुम अस्सलाम मुझा सोना अदा जेन कहते हैं कि तेरे होने से हसीन है ये कहानी दिल की तेरे होने से है आबाद फसाना दिल का अरे वाह क्या बात है और तारिक भाई लिखते हैं कि घोटकी में हमारे दोस्त सदानी ट्रेडर्स घोटकी दीपक भाई शकील ऋतिक मोहन अकबर अली बुक्टी फराज अली ये सब हमारे दोस्त हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं घोटकी में ओके जी ये सारे हमारी जो टीम मेंबर्स हैं जिनमें आप लोगों के लिए दीपक भाई मौजूद हैं शकील हैं ऋतिक है मोहन है अकबर भाई हैं फराज हैं ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो जितने भी घोटकी वाले लोग हमें सुन रहे हैं वो वहां से जाकर यानी कि सदानी ट्रेडर्स से जाकर आप जो है ना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटिश के प्रोडक्ट जो है ना वो परचेज कर सकते हैं आपको आराम से मिल जाएंगे और इन तमाम भाइयों को वेलकम कहते हैं और साथ साथ महर इरफान सियाल साहब कहते हैं कि सलाम मैम दीपक राज भाई माई डिस्ट्रीब्यूटर घोटकी से डेडिकेशन सॉन्ग टू दीपक भाई और उनकी ट्विंस डॉटर्स हैं वीरा एंड वीरता क्यूट प्रिंसेस माशाल्लाह ओके जी दोनों परियों के लिए प्यारा सा गाना लगा देंगे दीपक भाई को भी डेडिकेट कर देंगे आपकी तरफ से और बहुत शुक्रिया सर आप जो दीपक भाई माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ जो है ना उनके लिए ढेर सारी दुआएं और ये मेरे पास एक बड़ा प्यारा गाना मौजूद है मैं सोच रही हूँ कि हम सब मिलकर इंजॉय करेंगे लेकिन ये वाला गाना हम महर इरफान सियाल साहब की तरफ से दीपक भाई को डेडिकेट कर देंगे और उनकी जो प्यारी सी दोनों डॉटर्स है ना वीरा एंड वीरता उनको भी डेडिकेट करते हैं माशाल्लाह खुश रहें और एंजॉय करें वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स

उसी के कहते ही ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि ये गाने ऐसे गाने हैं हम जितने भी सुन ले हमारा दिल ही नहीं भरता. बहुत प्यारा बहुत सुंदर गाना है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है. और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं जनाब व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. अच्छा, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, तो आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए जिसमें आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है. तो जो लोग ऐसा होता है ना कि क्रीम ही नहीं लगा पाते हैं, चले आप ऐसा वाला सीन है कि चले आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है. अगर आप फेस वॉश ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश, ये सब लोगों के लिए है.

जी खो गए सपनों में हम, लेकिन आपने जरा आदेश कंप्यूटर क्रीम लगाकर उसकी खूबसूरती में खो जाना है। और किशोर भाई कहते कि मुझे बचपन में फनी सजा तो न मिली हुई, पर यादगार सजा, खतरनाक सजा मिली, जें जो मूसा को तालक भी न हो अली ई भी थी दो हो। वैसे मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक अबू, आज लिखते हैं कि अबू कमरे में बंद करने की धमकियां देते थे और तुम्हें मंगा के कमरे में। अच्छा वो कोशिश टॉपिक, अच्छा कहते हैं अच्छा प्रैक्टिस करते थे ताकि अबू अगर मुर्गा बनाए तो फिर हमें कोई तकलीफ ना हो। क्या बात है। गदा हुसैन लिखते हैं कि जी सिद्रा आज कुछ भी हो जाए लेकिन आपने गाना मेरा लगाना है। जी बिल्कुल आज आपका गाना लगा देंगे। इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं आप, मुझे बताएं दी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया या अभी आपके जो ये दोस्त हैं मोहम्मद बख्श मल्ला भाई उनकी दुकान पर अवेलेबल नहीं हुए हैं। और कहते हैं कि नूरदीन अबड़ो शाका अबड़ो विलेज आंदल खान मल्ला से आप हमारे साथ मौजूद हैं। ओके हो गया। फकीर साहिब शेख लाड़काना से हमें सुन रहे हैं, वेलकम। निसार मोलाई हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप हमारे पुराने लिसनर हैं। ओके जी, सपनों से बाहर आना तो चाहते हैं लेकिन हम आ नहीं पाते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे सपनों की जो दुनिया है ना वो बहुत सुंदर है और ये जो बाहर की दुनिया है ये बड़ी खतरनाक है। तो ऐसा लगता है हमें कि भाई हमें सपनों की दुनिया में ही रहना चाहिए। और समाटू गोपाल कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम डियर सिद्रा केसिया, कंबर सिटी से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस वॉइस, थैंक यू, वेलकम। आप बताएं दीस किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज किए कंबर सिटी में तो मिल रहे हैं, तो आप कब ले रहे हैं मुझे बताइएगा। गाना सुनना चाहते हैं, ओके जी सुना देंगे। अच्छा निसार मोलाई भाई आपने इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं, ठीक है जी, आप हमारे बड़े पुराने लिसनर हैं, 2013 से मेरा शो सुनते हैं। ओके लेकिन मैं तो तब आई नहीं थी एफएम पे। वेल आपको वेलकम कहते हैं। आप दीस्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा, ठीक है निसार भाई।

मजादा कबाब पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए पो तमा लगाई कोन बुधाईंदा हलो मुखे मीर मुमताज बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं ब्यूटी शो आपका अच्छा है स्किन केयर करनी चाहिए नाइस है वोट दाद मोहम्मद बिरोही मदेजी से मीर मोहम्मद बिरोही अशफाक अली बिरोही सजाद अली बिरोही भाइयों को वेलकम कहते हैं वासा भाई कहते अदी सिडो जवाब एक दफो अबे सजा दिनी हुई बदी छड़ो हुए पूरो कलाक अदी आई मामा ही चाचा सन गोशी कराइंदा हुआ अच्छा ये तो वैसे आम सी सजाएं हैं मुझे लग रहा है कोई ऐसी सजा बताएं जो आपको मिली अपने बचपन में आपको लगता है कि ये थोड़ी वक्री सजा है भाई अच्छा निसार भाई हमारे घुनी वाले लिसनर थे अब उन्होंने अपनी खामोशियों को तोड़ लिया है अच्छा किया है आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं थैंक यू बस आप एक काम कीजिएगा आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है तो वो भी आप परचेज कीजिएगा दोनों चीजें साथ में लगाएं ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहे दोदा हाली हमें सुन रहे हैं हेलो भाई अच्छा गदा भाई कहते गदी सिद्रा देख लो आपका प्रोग्राम चल रहा है लेकिन अभी मोरो वालों ने आपका प्रोग्राम बंद कर दिया है अब आपका प्रोग्राम कैसे

अपने मोरो वालो, ये क्या है, पहली शिकायत आपकी मुझे मिली मोरो वालों की तो मैं तारीफ करती हूँ। मोरो वाले जो हमारा अच्छे से प्रोग्राम कनेक्ट करते हैं, भाई तुम्हारी शिकायत आता न मिलन घुर्जे, सही प्रोग्राम कनेक्ट कर अदा मोरो वालो। अच्छा रमजान भाई भी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम रमजान भाई। थोड़े शॉर्ट शॉर्ट से कमेंट्स लिखा करें, इतनी लंबी चौड़ी शायरियां भेज देते हैं। शायरियां जो है ना वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में भेज दिया करें, ठीक है।

अरे किशोर भाई कहते हैं कि अदा शमन जो गानो बुधराए फकीरानी तबियत जो मुखे दिल बर मिली वियो आ ओके डेडिकेट टू माय स्वीट वाइफ छा गाल कजे भाभी के डेडिकेट वास सही वास भाई कहते अदी नंढपण में ना वडो शरारती हुअस घर वारन सा कावड़ कंदो हुअस वडो घर जो ज्ञान कंदो हुअस आईली वो कुटकी भी जाम खाइंदा हुंदा छडे त कोने दींदा हुंदव घर वारा अच्छा दाऊद अली पिताफी भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कराची से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम कहते हैं अच्छा दाऊद भाई लिखते हैं कि इस मतलब की दुनिया में तो मोहब्बत को मत ढूंढ खुद को बर्बाद करने की वजह मत ढूंढ यहाँ पर तो हर कोई अपने आप को वफादार बनाए बैठा है दाऊद तो जो खुद को बेवफा बनाने की वजह मत ढूंढ सब सुनने वालों को मेरा सलाम वालेकुम अस्सलाम जी टमाटू तांचो खानो भी हलायूं था और ये जी अरबेलो चाचड़ भाई घोटकी से हमें सुन रहे हैं अरबेला भा तां घोटकी मां जेको आने डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सगो था घोटकी में तवां जला डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा अवेलेबल कराए छडी आहे तो घोटकी में दीपक भाई वेठो आहे उन वटा तवां डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश वठी सगो था चाचा खालिद कहते हैं सजाएं मिलना तो अब स्टार्टेड बचपन में तो हम मासूम थे ये टॉपिक आंसर क्या बात है चाचा की हाँ सजाओं मिलन थी अरे बाबा केर चाचा के सजाओं दे तो

निसारदा कहते मुझे बड़ी अच्छी सजाएं मिली थी, उनको मैं जिंदगी भर याद करता हूँ। कौन सी सजाएं मिली ये भी तो बताएं। चलो मजा कंदासीं पर तव्हां हिते वियो, हिते टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो, उनखां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा। वापसी जल्दी मोटी तव्हां ईंदासीं। तव्हां काॾे न वञो, हिते वेठा हुजो, असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा रहो बाबा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन मिले थी त नंबर ते राबितो करे वठो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वठो। मां हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर आहे बाबा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जे तावन सां। सो लॻाईंदा रहो ऐं सुहिणा थींदा।

0: الغري. تهذيب وثقافة.
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream,
6: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: देखने की कोशिश ये लेते हम लोग सऊदी अरब इन्हीं हमलों की तस्दीक न कई. OIC सऊदी अरब ते हुसैन जे हमलन जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहिनि. हाला अदलिया में जजिस जी मुक़ररी विया. जुडिशनल कमीशन जो इजलास. पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आज़म जो सलाहकार राणा सनाउला ऐं ॿिया मेंबर इजलास में शरीक. सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जी सदारत हेठि इजलास में आला अदलिया में जजिस जी मुक़ररी जो फ़ैसिलो कयो वेंदो. वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां चीनी शहर वुहान में जदीद टेक्नोलॉजी वारनि मुख़्तलिफ़ मर्कज़नि जो दौरो. सिंध हुकूमत जो मनसूबी ज़हानत. डेटा सेंटर्स ऐं टेक्निकल तरबियत वारनि शोबनि में सहकार वधाइण जो फ़ैसिलो. स्मार्ट गवर्नर्स ऐं मनसूबी ज़हानत खे हथी ॾियण लाइ चीन सां सहकार जी तजवीज़. मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध हुकूमत रुगो टेक्नोलॉजी जी ख़रीदारी नथी चाहे, मुकमिल तरबियत ऐं सहकार जी ख़्वाहिशमंद आहे. डिजिटल मुशियत लाइ जदीद कम्प्यूटरिंग ताईं रसाई ज़रूरी आहे. वफ़ाक़ी गरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां यूरोपीय यूनियन जी हिजरत बाबति कमिश्नर जी मुलाक़ात. ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ऐं इंसानी स्मगलिंग खे रोकण ते ॻाल्हियूं. यूरोपीय कमिश्नर पारां इंसानी स्मगलिंग रोकण लाइ पाकिस्तान पारां ख़ैल क़दमनि जी वाखाण. मोहसिन नक़वी चयो आहे त इंसानी स्मगलिंग जे मुकमिल ख़ात्मे लाइ गॾिजी कम करणो पवंदो.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकरे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताईं सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306-244-7700।
7: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: बोलो हलाहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स यार कैल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आए मजबूत करे छींदो बुख खुली वेंदई खादो सुठे नमूने हजम थींदई पेट भूखजण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई।
3: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ये किथे मिलंदो?
2: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस के सामू अल नूर दवाखाना रूढ़ी आए राबते के लिए नंबर भी अथई 0305-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त ता इंसान तंदुरुस्त।

स्वागत वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया, लेकिन अब आप लोगों को बताया जाएगा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को जो बताने के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आप लोगों के लिए कितने सारे फायदे छुपे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबसे पहले तो

आम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब कि यहाँ पर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप उन्हीं सेम नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं जो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताए जाते हैं। तो नंबर सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये बात है कि अगर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनको अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप रब्ता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि भाई वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स कितने सारे हैं। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे वाइट एज ब्यूटी क्रीम है, वाइट एज ब्यूटी क्रीम है जनाब। उसके अलावा वाइट एज ब्यूटी सोप है, इसका फेस वॉश है, और साथ साथ इसकी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है। जी बिल्कुल, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब। उसके अलावा वाइट एज लवली क्रीम है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तमाम प्रोडक्ट जो है ना अपना अपना काम करते हैं। मतलब ऐसे कि अगर आपको चाहिए कोई ऐसी नाइट क्रीम जो कि भाई आप लोगों को रिफ्रेश बना दे, आपकी स्किन को अच्छा सा लुक दे दे, आपके चेहरे पर जो है ना व्हाइटनिंग ला दे, तो आपके लिए वाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एवोकाडो और मिल्क से तैयार की गई है। अगर आपको चाहिए कोई लाइट सा प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करें अपनी हर स्किन टोन के ऊपर, तो आपके पास वाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी सोप इस्तेमाल करने वाली समाते हैं, साबुन लगाना आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए वाइट एज का ब्यूटी सोप भी मौजूद है। क्योंकि वाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना, ये भाई वाइट एज ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आपको वाइट एज का ब्यूटी सोप भी परचेज करना चाहिए। वैसे ये आप लोगों के लिए एक ऐसा सोप हो सकता है जैसे आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं, सब लोग लगा सकते हैं। मोस्टली जैसे आप घर में कोई भी साबुन का यूज करते हैं तो सारे लोग ये वाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना लगा सकते हैं। ये बहुत ही मिल्की सा सोप है, इतना कमाल का कि स्किन को बना देगा, इतना सॉफ्ट सा ग्लोइंग सा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको वाइट एज का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो वाइट एज का जो फेस वॉश है ना, उसकी अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तैयार रखा गया है। वैसे तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्रीमी सा लुक चाहिए और मिल्की सा लुक चाहिए तो आपके लिए वाइट एज ब्यूटी क्रीम और वाइट एज का जो है ना वो साबुन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों के चेहरे पर वाइटामिन सी की कमी है, या फिर आपके चेहरे पर आपको चाहिए कि भाई, या ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को ऐसा क्रेज भी होता है कि हम वाइटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स लगाएंगे, तो आपके लिए वाइट एज का वाइटामिन सी फेस वॉश मौजूद है। और वाइट एज का जो वाइटामिन सी फेस वॉश है ना, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, और साथ साथ ये बड़ा क्रीमी सा फेस वॉश है, तो इसका इस्तेमाल भी आप सब लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं, कहीं जाना, यानी कि ऐसा होता है कुछ लोगों की घूमने फिरने की बड़ी आदत होती है, वो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, तो अगर आपको ट्रैवल करने का बड़ा शौक है तो आप वाइट एज का जो फेस वॉश है ना, ये आप अपने पास रख सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा जो है इसको आप कैरी कर सकते हैं, बहुत ही कमाल के आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। बाकी अगर यहाँ पर डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब की बात आती है, तो जिन लोगों के चेहरे पर बड़े एक्नी होते हैं ना, एक्नी को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है आपने बड़ी सी ट्रीटमेंट करवा रखी होती है, लेकिन ट्रीटमेंट से ऐसा है, मुझे लगता है कि फायदा जो है ना आपको थोड़ा सा वक्ती तौर पर मिल ही जाता है, लेकिन बाद में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लगाने पड़ जाते हैं। इतने प्रोडक्ट जो ना बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स की जब चक्कर लगाते हैं तो आपको पता लग जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए और कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपकी एक्नी की ट्रीटमेंट कर सके, एक्नी से फाइट कर सके, तो आपके लिए डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब है। अच्छा हाँ, ये जो है ना, आप लोगों को नाम जरा याद करना है इसका, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइट एज का ये जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है ना, इसका नाम आपको आना चाहिए। एक तो ये है कि भाई ये वाइट एज का आप एक्नी ट्यूब कह सकते हैं, दूसरा ये कि आपको ये नाम होना चाहिए क्योंकि ये आसान है मुझे लगता है नाम के ना, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब। ये डॉक्टर पिम्पल नाम से अगर आप लेंगे तो आपको बिल्कुल दुकानदार दे देंगे। और ये जनाब बहुत ही कमाल का ट्यूब है, ये बिल्कुल ये ट्यूब है, अगर आप कोई अच्छा सा एक्नी ट्यूब लेना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, तो आपके चेहरे पर जितने भी एक्नी है या फिर जो बैक्टीरिया आपके फेस पर जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से एक्नी बनते हैं, उनसे आपके चेहरे पर छुटकारा हो जाएगा। आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो खत्म हो जाएगा। एक्नी मार्क्स हैं या फिर ब्लैक पॉट्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ये तमाम चीजें भी खत्म हो जाएंगी। आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, क्लियर हो जाती है और बेदाग हो जाती है, और आपके चेहरे पर जो है ना सारे एक्नी का खात्मा हो जाता है। उनके अलावा जेको असावट व्हाइट एसी लवली क्रीम भी मौजूद है। मैं तक आराम आराम से सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बुधाई ना, पर खोड़ सारा डी थी ना, तो तुम थोड़ो विसरी वो होंगे इन लाइ मैं सभी प्रोडक्ट जो डिस्क्लेमर डी दिए चाहती, तो कड़ा कड़ा प्रोडक्ट है उनके लगाए सको था। बाकी हाँ, डिटेल्स तुम बिल्कुल शेयर करना सी, अगर तुम इस्तेमाल करना वाइट एज का प्रोडक्ट तो तुम्हें खबर हो जाए, जो भी प्रोडक्ट तुम लगाया था उन्हें जो रिजल्ट छा मिलो तुम्हें छो लगा पाया।
सो अगर वाइट एस ही लवली क्रीम जी असा गाल कयूं था वाइट एस जो लवली फार्मूलो है ना ही दाडो जबरदस्त कमाल जो फार्मूलो है बाबा ही लवली क्रीम है जेका तमहा मतलब नीह जो भी लगाए सगो था आई के फंक्शन में वनो था का पार्टी आहे या फिर जेकी कॉलेज वेंदी छोकरियों होंदी आहे या तमा जी का जॉब आहे तमा स्कूल वनो था या कोई भी तमा जो कम आहे तमा जे पर्स में बस वाइट एस लवली क्रीम हो जे यानी के सफा मेकअप वारो फार्मूलो अच्छी वेनो तमा जे चेहरे ते आई तमा के खबर पंदी त एतरो जबरदस्त इकडी लवली क्रीम तमा के निखार दे भई त तमा उनके इस्तेमाल करे पांजे खूबसूरती में इजाफो आने सगो था वाइट एस जेका लवली क्रीम आ ने बाबा रेडिएंट अल्ट्रा वाइटामिन जो फार्मूलो आहे जें जी अंदर 3 वाइटामिन्स एड कया वया आहिनि इन लाइ एड कया वया आहिनि त तव्हां जी स्किन ते जेके वाइटामिन्स जी कमी हूंदी आहे न उहा पूरी थींदी रहे वाइटामिन्स की कमी जब पूरी होती रहेगी तो आपके चेहरे पर निखार और खूबसूरती तो खुद ब खुद आता जाएगा तो वाइट एज की लवली क्रीम ये एक फेयरनेस फार्मूला है जो लोग फेयरनेस क्रीमें लगाना पसंद करते हैं या जिनके चेहरे पर ऐसा होता है कि आप मेकअप नहीं लगा पाते मेकअप से ऐसा होता है ना कि भाई आपकी स्किन मजीद खराब हो जाती है खास करके सेंसिटिव स्किन वालों तो मेकअप अगर आपके चेहरे पर सूट नहीं करता तो बस सिर्फ आप जो है व्हाइट एश लवली क्रीम लगा लीजिए आप मिनटों में रेडी हो जाएंगे चुटकियों में रेडी हो जाएंगे और आपके चेहरे पर एक प्यारा सा निखार भी आ जाएगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एश लवली क्रीम से मिलने वाला है तो व्हाइट एश की लवली क्रीम तो बिल्कुल आप लगाएंगे साथ साथ आप लोगों के लिए ये भी पता होना चाहिए कि अब सर्दियां आ रही है तो व्हाइट एश का जो है ना वो आपके लिए लोशन भी मौजूद है और लोशन जो है ये भाई ट्रिपल वाइटामिन का फार्मूला है और ये बड़ा आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देगा तो जिन लोगों को लोशन चाहिए होता है खास करके हमारे चाचे को तो चाचे को जो हमारा लोशन चाहिए तो वो आप जो है व्हाइट एज का लोशन ले सकते हैं जो कि ट्रिपल वाइटामिन से बना हुआ है और इसके अलावा आपकी स्किन मॉइस्चराइज कर देगा और साथ साथ जो है ना हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं जो कि व्हाइट एज के अंदर मौजूद है 3 अलग अलग वेरियंट्स के अंदर आपको ये मिल जाएंगे एक लेमन का वेरियंट है दूसरा जो है वो जनाब रोज का वेरियंट है और तीसरा खीरे का वेरियंट है ये तमाम चीजें हैं व्हाइट एज के मतलब मुझे लगता है व्हाइट एज वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट रेडी कर लिया है ताकि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों को परेशानी ना हो बस आप जाएं और अपने हिसाब वाला प्रोडक्ट परचेज करें और खूबसूरती का जो है ना दरवाजा आपको मिल जाए कि अब हमने खूबसूरत होना है बस ये हमारे हाथ में प्रोडक्ट है और अब हम इसे लगाएंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे जल्दी जल्दी से व्हाइट एज के ये तमाम प्रोडक्ट्स लगाइए आप पिक कीजिए आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के हिसाब से है जो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हो व्हाइट एज सोप हो व्हाइट एज का फेस वॉश हो डॉक्टर पिंपल ट्यूब हो या फिर व्हाइट एज लवली क्रीम हो या फिर लोशन ही क्यों ना हो ये तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा लाएंगे आपको हसीन प्यारा खूबसूरत बना देंगे ये जनाब लगाने के लिए और साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर मंगाने के लिए आपको जो नंबर्स बताए जाते हैं उनके ऊपर भी राबता रखा करें और कॉल या फिर मैसेज करके उनको बता देंगे आप भी परचेज करना चाहते हैं व्हाइट एज की तमाम रेंज को और डायल कीजिए 0332738 4309 बुढ़ी 332 73 84 309 नंबर आ 03-12-50-25-907 बुढ़ी 312 50-57

जी ॾाढो भलो गानो हलायो आहे होमेरा चन्ना जी आवाज़ में सहरो आहे वैसे ही सहरो असांखे हिदायत अला फरमाइश कई अलाए कंहिंजी शादी थो कराए तव्हांजी त नथी थिए न मतां थी बि सघे थो थींदी जी छो त तव्हां असांजा प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कया आहिनि चाहे उहे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी वाइटीज़ जा प्रोडक्ट्स हुजनि बाबा जॾहिं तव्हां इस्तेमाल कंदा तव्हांखे ख़बर पवंदी त वाक़ई ख़ूबसूरती किथे लिकियल हुई अच्छा हिते पैनल जी तरफ़ अचूं था त तव्हांजा खोड़ सारा मैसेजिस जमा थी विया आहिनि सो पढ़ी वठंदासीं।

हमारे साथ यहाँ पर महबूब अली मोरो सिटी से कहते अस्सलाम वालेकुम सदरा मुस्कान कुंज माशाल्लाह आपका प्रोग्राम और क्या बात है स्टार्टिंग जीती रहो सदा दिल खुश हो जाता है आपको सुनकर सो नाइस ऑफ यू थैंक यू वेरी मच प्यारा सोना भात आसा के मोरो में ज्वाइन किया है और मोरो से अजहर अली भट्टी भाई है और आप हमें सुन रहे हैं जी सॉन्ग शाहिद अली बबर का सुनना चाहते मैं कोशिश क्या थी तुम्हारा गानों हलाइंदी अच्छा गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू के आरजे सिदरा मुस्कान शो तवां जो वेरी वेरी नाइस आए सलाम तवां के वालेकुम अस्सलाम तवां के सजाद रुस्तमानी भाई हमें मातली से सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद अब्दुल्ला महर कहते हैं मीरपुर खास से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ब्यूटीफुल है मैं और मेरी पूरी जो फैमिली है ना वो यूज करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है सॉन्ग आपकी पसंद का एंड सिंगर हमारी पसंद सिंगर फैजाली डेडिकेट आपको और डेडिकेट किया है नोरिन कराची वाली को डेडिकेट चाचा को डेडिकेट वाह सही वाह सही गोले गोले डेडिकेट क्यों थे अब्दुल्ला भाई आपको वेलकम कहते ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और बाकी जो लोग व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते रहिए शहजाद अली राजपर फ्रॉम बसीरो वालेकुम अस्सलाम अदीस सदा की आए हो अल्लाह आपको खुश रखे प्रोग्राम इज वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच प्यारा सोना भात आज मोहब्बत हुआ है और मोरो से महबूब अली भाई तमाम भी चाहिए बाबा मोरो जी जो रेडियो से प्रोग्राम थोड़ो सही न पो हले इन लाइ मु मैसेज करे छो आए अल्लाह कंदो सही थी चाचा कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट बिल्कुल चाचा तुम गानों हलाए वेठू था मकसद हमें सुन रहे हैं मेहरापुर से कहते हेलो हेलो जी मैं भी तो आपका शो सुन रहा हूँ और जी बड़ी बड़े लोग आदाब से सारे ये आपने शायद शायरी लिखी लेकिन शायरी की टांगे वांगे तोड़ दी आपने तो इसको हम पढ़ना जो है ना वो थोड़ा सा स्किप कर देते हैं बाकी चौथा सिदरा मुस्कान जी सिंधी सिंधी मुझे भली आए छोटो का जो कंधा आयो मुझे सिंधी थे और हमारे साथ ही जीपाल भाके थे एक टॉपिक भाव जी बचपन में एक गलती हुई थी तो मेरे पप्पा जी ने हुक्का पानी बंद कर दिया था मैंने पूछा कितने दिन मंथ के लिए हमारे मॉम ने साथ दिया एक मंथ खर्चा बंद किया वक्त था वो भी क्या बात है जी मेरे को लगा खाना पीना बंद कर दिया लेकिन खर्ची बंद सही सही खर्ची टेंशन ना है बाबा खाना पीना बंद हो जाए तो वो जरा मुश्किल वाली बात हो जाएगी और आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए ठीक है जयपाल भाई और मुझे बताएं खुशी कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं और फजली हमारे साथ कहती वालेकुम अस्सलाम हैप्पी आफ्टरनून और माई स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिदरा मुस्कान जी कैसी हो मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसी हैं सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स टॉपिक डियर स्वीटी मुझे ऐसी कोई सजा नहीं मिली थी बचपन में मैं सबकी लाडली रही हूँ जाना ओके आप रही हैं बाकी तो सब नहीं रहे होंगे ना वही बता रहे हैं बस

हा भाई मुखे न ही दरअसल असांजे किशोर भाई खे भाभी मिली जंहिंजी तबियत जेका आहे उहा फ़क़ीराणी आहे, असांजी भाभी वाकी ॾाढी भली आहे। उहा भली इन लाइ आहे छो त हूअ वाइटी सां प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदी आहे। न वैसे तबियत में भाभी ॾाढी भली आहे। अलाह साईं ख़ुशि रखे तव्हां जोड़ी सलामत हुजे। ऐं तव्हां ईअं ई असांजा प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा रहो। हुन खां अलावा जिन माण्हुनि असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर नाहे कयो, बाबा छो कंजूसियूं कंदा आहियो, असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो। जवेरिया असांजो प्रोग्राम ॿुधे पई लाड़काने खां, जवेरिया तव्हांखे चवंदा भली करे आया और हमारी प्यारी दिल रुबा भी हमारे साथ मौजूद है और मौजूद है जी। ये वालेकुम असलाम सिदराबाजी में मंसूर अली अकरो शरीफ से टॉपिक आंसर में स्कूल में नहीं जाता था तो सजा मिलती थी। सलाम अनोमान और जुनेद हिंगोरचा राशिद शाह को और अहमद मुगल का गाना सुना दीजिएगा। शो शो आपका बड़ा वीआईपी हो रहा है। ओके जी, बहुत शुक्रिया भाई, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं।

वाह साईं वाह गानो बुधो था सभी के गानो वणे पो और निसार मोलाई भा तवा के भी असो प्रोग्राम वणी पो पर तुम मुख्य हाल अहाल दियो तुम वाई टी सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कना को हाँ तुम सभी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स ठाराया यानी के तुम फेस वॉश रखो वाई टी फेस वॉश लगाए सो साबुन हणदा तो तुम वाई टी साबुन लगाए सो वाई टी सी ब्यूटी क्रीम भी है जनाब नाइट क्रीम अगर तुम इस्तेमाल करना चाहो कोई सुठो फार्मूलो हल्को फार्मूलो जिनके अंदर खीर हो एवोकाडो हो एलोवेरा हो तो वाई टी सी ब्यूटी क्रीम मौजूद है वरी कें एक्नी प्रॉब्लम है दाना नथा छन तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ठारा थी माव वरी कें कोई फेयरनेस क्रीम लगानी है जो डीह जो लगाए मेकअप की जरूरत तवे न पड़े तो तवे वाई टी सी लवली क्रीम ठाराई थी माव ये सब प्रोडक्ट्स तुम वनो पांच करीबी जनरल स्टोर से वही वी अचो ये सब प्रोडक्ट तक मुनासिब पैसों में मिलता है मुनासिब पैसों से गडोग स्किन के लिए ढा फायदेमंद है छो तो ही सब जो प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल अजाज से तैयार थियल वाइटमिन जो भरपूर फार्मूलो है सो लगाइंदा रहो तुम मर्द मायू सभी के लिए आन बाबा खूबसूरती हासिल करने सभी जो हक है सो बोलो बाबा साडा हक ऐसे रख अच्छा अली रज़ा लगाड़ी भाई गानो हले पे शमन जो एंजॉय करी वेठो मुगल उमरानी भा से गड मौजूद है थैंक यू हजार भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा वेलकम कहते और नजर मोहम्मद भट्टी भाई है हेलो जी मैं ठीक हूँ ताम उदाय की आयो आतिफ असलम का गाना सुनना चाहते है मटियारी से आपने मुझे ज्वाइन किया है मैं आपको वेलकम कहती हूँ आपका गाना लगा देगा और उनका अलावा दर्दी दिल आ चुके कहते हेलो हटो हटो मुझे आने दो जरा वालेकुम असलम चंदा जानी कैसी हो मैं बहुत प्यारी आप बताए कैसी है

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुश और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइट छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चार रंग जो खूबियो ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ए चार रंग जो खूबियो जिल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन सां गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सां चेहरे के मिले वधीक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
5: सिंध के माथे का झूमर
6: जी FM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज।
1: तेरी आया आपकी मोहब्बतें समाधि कर चाहते हैं और इन खां अलावा जेको आहे सो असा के दे सोना सोना मानो बुधन पया जिनमें असा सगर शामिल आहेन सखरवारा मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरंड मेहरापुर माजली नूरियाबाद ए लाड़काणी जो समातो एडा दसो खोड़ सारा खूबसूरत मानो असा सगर मौजूद आहेन जेके वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करी रहया आहेन अहिते असा तवां के भला भला गाना भी बुधाई रहा सो ही फैजल जी आवाज में गानो हले पर जेको असा अब्दुल्ला भाई के डेडिकेट कयो सी। अच्छा तुम पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो तेस ती चाहती क्या तह वाइटिश ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधाया थी। अगर तुम वाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया जी बिल्कुल वाइटिश ब्यूटी क्रीम अगर तुम इस्तेमाल कयो पया तो खबर हो वाइटिश ब्यूटी क्रीम की क्वालिटी है ना तमाम जबरदस्त।

क्यों खोलियो ने लख लुटायो सोने ता आखे शो सोने एडो कहियो चाहे सोनो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाया पो गाल समझ में ची यार सोने के चो बाबा व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाए सही यार।

हे गानों की गाने जी करते थे अब उधर सुमाटू ने गाने जी फरमाइश किया बिल्कुल गानों मजेदार है पर गाना बुधंदी गुड़ गुड़ तुम व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करना तो मजो अची वो अगर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जी आज तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से अना अवेलेबल को नंबर बुधाई दी आया जिनसे तुम राबो करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल भी कराए सको था सो जनाब नंबर जो नोट कर वो अगर अना तुम को सो नंबर है 0930 43 09 0930 12 84 2597 0 3 1 2 5 0 2 5 9 0 7 वही टे सौ बारह पंजा पंजवी नव सौ सत्त ही नंबर से जी तुम डायल करी पांजी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो जो भी प्रोडक्ट तुम्हें लगे तो ही प्रोडक्ट असा सावा रुआ है तुम उनके परचेज कर सफा भला रिजल्ट मिलता रहा तुम सोना सोना थन्दा रहा।

जयपाल भाई हमारे साथ हैं। जयपाल भाई क्या कहने आपके, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ हैं जयपाल भाई क्या कहने आपके, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बिल्कुल ऐसे ही आप व्हाइटिश की लवली क्रीम लगाते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप लगा

समझ ही नहीं आती थी तो अम्मी चांटा मारती थी। ओके उन जो पो असर लगे तो हले तो आई तव्हां त अमीना ब मैसेज कया नहीं सेम तव्हां जा ब मैसेज अची विया आहिनि असांजे पैनल ते। सो थैंक यू सो मच सोनी तव्हां सां गॾु मौजूद आहे तव्हांजो मोहबतूं आहिनि बाबा ईअं कॾहिं कॾहिं पंहिंजे हुजण जो सबूत ॾेई छॾींदा कयो। और हमारे साथ झुलरी खां खालिक लाशारी शो वी आई पी आहे। थैंक यू वेरी मच खालिक भा। अच्छा मां कोशिश कयां थी लास्ट में का जयपाल भाई पोइट्री तव्हांखे ॿुधाए वठंदमि। ॾिसां टाइम बची वियो त हिते इलाही सारा कॉमेंट जमा थी विया आहिनि। ली मथे भॼंदा था वञनि ओ ईअं भॼंदा था वञनि। अच्छा हमारे साथ गुल यासीन नाज भाई आपको वेलकम हो गया। चाचा कहते हैं हाँ लोशन में लगाऊंगा। बिल्कुल आप लोशन जाइएगा परचेज कीजिएगा वाइटेज का आपको लोशन मिल रहा है। बहुत ही कमाल का लोशन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि या तारिक भाई को बोल दें भाई तारिक भाई को बोल दें तारिक भाई आपको पहुंचा दे के घर बैठे। और गदा हुसैन कहते हैं कि वन्य अच्छा कहते हैं आज डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई मुझे शादी थी रही आहे कल आपने दुआ की काम दिखा दिया भाई आपकी दुआ ॾिसो मुझी दुआ केॾी फास्ट सर्विस आहे। बाकी मुझी दुआ असर कंदी त ॾिसो तव्हां कल मूंखे चयो था दी मुंहिंजी शादी न पई थिए। जॾहिं बि डेट फिक्स थिए थी त कुझु न कुझु फैमिली में थी वेंदो आहे ऐं तव्हांजी ॾिसो हाणे शादी थींदी इनशाला ख़ैर सां तव्हांजी शादी थी वेंदी। तव्हां ओतिरे ॾींहनि में तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो ठीकु आहे। ऐं वरी तव्हां जॾहिं वाइटेज जो ई फार्मूलो ट्राए करे ॾिसंदा न त तव्हांखे इन मां बि भलो रिज़ल्ट मिली वेंदो। सो तव्हां लॻाईंदा रहो शादी ताईं सफ़ाई पप्पू थी वञो। जी वैसे हिदायतला सही बात है शादी वाले गाने सुनकर मजा ही आ जाता है। मोहम्मद जमान भाई जियो करे इससे। दर्दे दिल कहती है कि मानना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं तो मेरा शौक देख और मेरा इंतजार देख। वाह साईं वाह वाह साईं वाह। अच्छा एसन अली भुक्ति हमें लाड़काना से सुन रहे हैं। एसन भाई आपको वेलकम हो गया। फराज दहरी सुन रहे हैं कहते हैं मजहर और मजहर की तरफ से सलाम। सो वालेकुम असलाम दोनों भाइयों को वेलकम।

अच्छा अख्तियार अली गब्बर भाई हमें सुन रहे हैं विलेज मोहम्मद उस्मान गब्बर जुल्फकार अली गब्बर अली दोस्त गब्बर प्रोग्राम बेहतरीन थैंक यू वेरी मच प्यारा भात पाने गोठन में भी वाइटेज प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था।

ताजा नजर मावन भटी भा तव्हांखे प्रोग्राम वणे पियो गाना वणनि पिया सो बाबा बिल्कुल ई असांजो सुहिणो प्रोग्राम आहे जंहिंखे तव्हां ॿुधंदा आहियो ऐं जंहिंमें तव्हांखे ख़ूबसूरती जा राज़ बि ॿुधाया वेंदा आहिनि। किशोर भाई कहते आहिनि की मूं ते कावर करण खां बहितर आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो। ओ इहा ॻाल्हि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए बाबा जी सोना थी वेंदा। और गदा भाई कहते हैं कि सदरा देख लो आज मैंने आपको तकरीबन 10 मैसेज किए लेकिन आपने मेरा एक भी मैसेज नहीं पढ़े हैं, सारे पढ़े लेकिन ये अलग बात है कि आपने सुने नहीं होंगे अपने मैसेज। तो प्रोग्राम जब मैं कर लू ना तो फेसबुक पर हमारी ये पोस्ट है ना उस पर सारी रिकॉर्डिंग पड़ी होती है तो आप वो सुन लीजिएगा ठीक है। गदे दिल कहती है कि मैं बहुत मासूम थी तो मुझे कोई सजा नहीं मिली। यानी कि आप ऐसे कोई काम करती नहीं थी कि आपको सजा मिले ऐसा है ना। अच्छा चाचा तव्हां जेको गानो चयो न उहो अहिड़ो गानो जेको 5 बजे वारे प्रोग्राम ॿुधंदासीं ठीकु आहे। चोरी चोरी चुपके चुपके।

हज़ार भाग्य ते साढा हक एथे रखमावी तयो चवान थी वञो ऐं पंहिंजे पंहिंजे हिसे जी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करे अचो। तव्हां कहिड़ो बि प्रोडक्ट वठी ईंदा उहो तव्हांजे ख़ूबसूरती में चार चंड लॻाए छॾींदो। वैसे तव्हां रेग्यूलर कोई कमु कयो था, को जॉब कयो था या पढ़ो था पढ़ायो था, त तव्हांजे लाइ वाइटिश लवली क्रीम सफ़ा बेस्ट रहंदी बाबा। वाइटिश लवली क्रीम हिकु फेयरनेस क्रीम आहे जेका तव्हां बसि ईअं चहिरे ते लॻाए छॾींदा, तव्हां चुटकी

जो रिकॉर्ड होता है एफबी पे सिस्टर, फिर भी आप इतना बस ये भाई आप लोगों की मोहब्बतें होती है कि आप ऐसा समझ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ये आपका प्यार है। अच्छा जयपाल भाई लिखते हैं कि सोच समझ कर रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम। सोच समझ के रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम। जब चलते हैं तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। पोइट्री मैंने सुना दी, अब आपकी बारी इरशाद। इरशाद क्या जाए। एक मिनट वेड़ो पानी सी।

नहीं तब हाँ अच्छा हाँ फहीम भाई गाना एंजॉय कीजिए और यहीं पर बस आप लोगों से लेते हैं इजाजत वरी तवा से मुलाकात मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में थे पर सो फहीम भाई कहते हैं आपका अचानक ट्यून क्यों चेंज हो जाता है अदा खुश रहा करे ओके सांझो हुकुम यो उदायो और बस मोकलानी आ ऐसन कहते हैं मां भी बैठो हाँ पर खामोश कोई गाल है न तो मुसा ता मुसा गाल है नहीं के बे के छड़े दियो बाबा चलो 5 बजे वाले प्रोग्राम में मिलूं था पांजो ओ ही दो सारो ख्याल रखना किथे का गलती थी हो जाए तो माजरत केनो को मैसेज रे जियो को गानो शानो रे जियो तो बाबा माजरत कयूं था मोकलानी नाही सिलसिला में सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: to. It's 3 p.m. It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम
5: अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
6: दे हैव ब्रोक हॉल्स हु वुड लाइक टू मीट द प्रेसिडेंट नोबडी आई डोंट वांट वी हैव एन हार्ड टाइम फिगरिंग आउट हु द हेल टू डील विद टू बी ऑनेस्ट विद यू आई थिंक वी वेंट टू फार बर्नी कुडन्ट स्टॉप एट लेवल 1 Level 2 and level 2.5 is probably going too far. But the Trump dividend, so...
7: अमेरिकी सदर ईरानी क़यादत के निशानो बनाने लाइ हद पार करण जो एतराफ़ करे वरितो रूस ऐं चीन पारां ईरान जी मदद करण वारियूं ख़बरूं बि रद्द करे छॾियूं डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरानी क़यादत के निशानो बनाइण में अमेरिका हद खां निकिरी वियो हाणे जंग जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि में मुश्किलात जो शिकार आहियूं चीन ऐं रूस ईरान जी मदद न करे रहिया आहिनि ईरानी नायब परडे॒ही वज़ीर काज़िम गरीबाबादी चयो आहे त अमेरिका जे जवाब जो जाइज़ो आख़िरी मरहले में आहे जल्द जवाब डि॒नो वेंदो

0: यमनी हुसैन पारां हिकु भेरो ॿीहर सऊदी शहर रियाज़ खे निशानो बणाइण जी दावा। कमीज़ स्टेट में बि फौजी अॾे ते हमिलो। सऊदी अरब इन्हीं हमलनि जी तसदीक करे छॾी तसदीक न कई आहे। OIC सऊदी अरब ते हुसैन जे हमलनि जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहिनि। आला अदलिया में जजिस जी मुकररीअ लाइ जुडिशियल कमीशन जो इजलास। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आज़म जो सलाहकार राणा सनावला ऐं ॿिया मेंबर इजलास में शरीक। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जी सदारत हेठि इजलास में आला अदलिया में जजिस जी मुकररी जो फ़ैसिलो कयो वेंदो।
1: वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां चीनी शहर वान में जदीद टेक्नोलॉजीअ वारनि मुख़्तलिफ़ मर्कज़नि जो दौरो। सिंध हुकूमत जो मसनूई ज़हानत, डेटा सेंटर्स ऐं टेक्नोलॉजी तरबियत वारनि शोबनि में सहकार वधाइण जो फ़ैसिलो। स्मार्ट गवर्नेंस ऐं मसनूई ज़हानत खे हथी ॾियण लाइ चीन सां सहकार जी तजवीज़। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध हुकूमत रुगो टेक्नोलॉजीअ जी ख़रीदारी नथी चाहे, मुकमल तरबियत ऐं सहकार जी ख़्वाहिशमंद आहे। डिजिटल मईशत लाइ जदीद कंप्यूटिंग ताईं रसाई ज़रूरी आहे।
0: वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी सां यूरोपियन यूनियन जी हिजरत बाबति कमिश्नर जी मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन इंसानी स्मगलिंग खे रोकण ते ॻाल्हि हुई। यूरोपी कमिश्नर पारां इंसानी स्मगलिंग रोकण लाइ पाकिस्तान पारां खयल क़दमनि जी वाखाण कई वई। मोहसिन नक़वी चयो आहे त इंसानी स्मगलिंग जे मुकमल ख़ात्मे लाइ गॾिजी कम करणो पवंदो।
1: मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जो समूरे बोगियूं पटड़ीअ तां लही वयूं। 6 मुसाफ़िर फौत, केतिरा ई ज़ख़्मी। रहमान बाबा ट्रेन कराचीअ खां पिशावर वेंदे मुल्तान वटि हादसे जो शिकार थी वई। ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफ़िर सवार हुया। रेलवेज़ पारां हादसे में 6 मुसाफ़िरनि जी तसदीक थियण जी तसदीक करे छॾी। ट्रेक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते ॾुख जो इज़हार। ज़ख़्मियुनि खे बहितरीन तिबी सहूलियत फराहम करण जी हिदायत।

0: सुसाइड खुदकुशी लगी रही आ छो त जिन तरीके से गनशॉट थो जालिम मुड़स के बार नशा वशे दिनी हुई है प्लस में सुसाइड नोट जो मिलन याद रहे कि सुसाइड नोट हैंड रिटन नोट है वो टाइप रिटन नोट या प्रिंटेड नोट ना है जदय घर मालिकान आया है तो जोर से खड़कायो अथन नेठ दरवाजो तोड़ो अथन बॉडी जो पोस्टमार्टम हाने थी रो है हर एंगल का दिसासी जेके हकीकत में तुम दोस्तों शेयर कर
1: मलीर जे फलकनाज सोसाइटी जे घर में एक ही कुटुंब जे पंज भातिन जा लाश थाया पोतिन में घरधणी शाहजेब संदस जाल सबा भेण शुमाइला मासूम धीर आर्या आयजन शामिल आन पुलिस जो चवण है बिन्हीं बार नारी शुमाइला के जहर डेई मारण बाद घरधणी शाहजेब जाल के कतल कर बाद आपघात किया है घर जो दरवाजो भी अंदरां बंद हो इलाके वासिन बुधायो है शाहजेब मुआशी तौर से परेशान रहंद हो आईजी सिंध वाके जो नोटिस वठंदे डीआईजी का रिपोर्ट तलब करे वरती।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
5: खुशखबरी हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306-244-7700।
6: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
8: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
8: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
9: सुपर वाइट।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज,
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सुपर वाइट।
6: कई ओ आई सी सऊदी अरब ते हुसन जे हमले जी मज़ामत कंदे चयो आहे त इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां बीठ रिलाय जुडिशल

0: 12 हादसे में 6 मुसाफिरनि जी तस्दीक थियण जी तस्दीक करे छॾी। ट्रेक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते ॾुख जो इज़हार। ज़ख़्मियुनि खे बहितर तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत।
1: जंहिं तरीक़े सां गनशॉट थियो आहे ज़ालिम मुड़ुस खे, उन ॿार जेके आहिनि उहे उनखे नशावशी ॾिनी वई आहे। प्लस में सुसाइड नोट जो मिलनि ऐं यादि रहे की इहो सुसाइड नोट हैंड रिटन नोट आहे, उहो टाइप रिटन नोट या प्रिंटेड नोट न आहे। ऐं जॾहिं घर मालिकान आया आहिनि, उहो ज़ोर सां खड़कायो अथनि, नेठि दबाज़ो तोड़ियो अथनि। बॉडी जो पोस्टमार्टम हाणे बि थी रहियो आहे। हर एंगल खां ॾिसंदासीं जेके हक़ीक़त मां तव्हां दोस्त सां शेयर कजांइ।
0: मलीर जे फलकनास सोसाइटीअ जे घर मां हिक ई कुटुंब जे 5 भातियुनि जा लाश हथ फोतुनि में। घर धणी शाहज़ेब, संदसि ज़ाल सबा, भेण शुमाइला, मासूम धीअर आर्या ऐं आयज़न शामिल। पुलिस जो चबारनि ऐं नारी शुमाइला खे ज़हर ॾेई मारण बाद घर धणी शाहज़ेब ज़ाल खे क़तल करण बाद आपघात कयो आहे। घर जो दरवाज़ो बि अंदरां बंदि हो। इलाइक़े वासियुनि ॿुधायो आहे त शाहज़ेब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो। आई जी सिंध वाके जो नोटिस वठंदे DIG ईस्ट खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। अदालत दाख़िला लाइ एंट्री टेस्ट 4000 खां वधीक शागिर्दनि जी शिरकत। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया एंट्री टेस्ट दौरान कापी रोकण में नाकाम। पाबंदीअ बावजूद शागिर्द टेस्ट दौरान मोबाइल फोन जो सरेआम इस्तेमाल कंदा रहिया। सिक्योरिटी इंतिज़ाम सख़्त रहिया। मेहड़ भरसा इंडस हाईवे ताण ॼातल शख़्स जो चिचिर लाश हथ इस्पताल मुंतकिल, जंहिंजी सुञाणप नथी सघी। कराचीअ में CTD ऐं हसास इदारनि जी गॾियल CTD तर्जमान मूजिबि शहर जे हसास सिविल इदारे जी गॾियल कार्रवायूं कयूं आहिनि। शताब अहमद रहिया हुआ। वधीक स्कूलनि जी दमनीअ ख़िलाफ़ कोटरीजीअ में बि बदमनीअ ख़िलाफ़ रिंद बिरादरीअ जो मेराण हाईवे ते एहतजाज। इलाइक़े में अमन अमान बहाल कराइण जो मुतालबो। हैदराबाद में मदीना टाउन जो पुलिस जे मुबैना ज़ियातन ख़िलाफ़ एहतजाज। घरनि ते चढ़ाई कई, गिरफ़्तार करण जो हुकुम करे छॾियो आहे। गिरफ़्तार नौजवान खे आज़ाद करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। मीरपुर ख़ासि भरसां रोड ते लॻल पेट्रोल यूनिट्स खे बाहि लॻी वई। 3 ॼणा सरी ज़ख़्मी। टंडो आदम नाके वटि पेट्रोल जे 2 यूनिट्स खे बाहि लॻी। बाहि विसाइण जी कोशिश दौरान फायर ब्रिगेड अमले जे 2 मुलाज़मनि समेत 3 ॼणा सरी ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड कुझु देर जी मेहनत बाद बाहि ते ज़ाब्तो आंदो। दादूअ में थड़ी मोहबत भरसां संगावती तकरार तां क़तल थियल औरत वारे केस जो जरगे ज़रिए निबेरो थियो। धुरियुनि ते गडि॒यल तौर ते 90 लख रुपया ॾंढ लॻायो वियो। ॻोठ मीर मोहम्मद भंड में संगावती तकरार तां औरत जे क़तल ऐं घर खे बाहि ॾियण जो फ़ैसिलो थियो। साहब खान ऐं गुलज़ार भंड विच में हलंदड़ तकरार जो महबूब भंड जे सरपंचीअ में निबेरो थियो। साहब खान भंड ते औरत जे क़तल जो 75 ऐं गुलज़ार भंड ते घर साण जो 15 लख रुपया ॾंढ मुक़ररु कयो वियो। निबेरे खां पोइ ॿिन्ही धुरियुनि खे भाकुर पाराए खीरखंड कयो वियो। ऐं शिकारपुर वेझो चोर मंदर मां 2 लख रुपियनि जो सामान बुहारे विया। चोरनि मंदर मां सोन, रोक रक़म, पख ऐं ॿियो सामान। मंदर कंदड़ पवन कुमार चयो आहे त चोर मंदर जा ताला टोड़े दाख़िल थी सभु कुझु बुहारे विया। चोर गिरफ़्तार करे सामान वापसि करायो वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News,
3: brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
5: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली ख़ान नेशनल

0: Council for Homeopathy of Pakistan, Homeopathic Consultant and Family Physician, Senior Lecturer, Nawab Shah Homeopathic Medical College and Hospital, Nawab Shah. Marizan jo checkup and alaj homeopathic tarike sa kanda ahene. Alhamdulillah, ketrai mariza sehatyab thi chuka ahene. Awambe, hek dafo azmai diso. Checkup fees is sirf 300 rupya. Clinic mein medical store chi saulat pin maujood ahe. क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकला है एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आओ पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चावरन जो खूबियों एक कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन नमी के लॉक करे एक चावर जो खूबियों जल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर एंड रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: संजो आवाज उतरदा रहो उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: आप सुन रहे थे GAFM। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम,
6: अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
7: खया आहिनि वफ़ाक़ी हुकूमत जी का बि सियासी एजेंडा न आहे। हाणे केपी हुकूमत में दहशतगर्दनि जो को बि हमदर्द न आहे। दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ हिक ई मुल्क में ब पॉलिसियूं कीअं हली सघनि थियूं? कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त केपीअ में दहशतगर्दीअ जे वाकियनि में गणतीअ जोगी वाधि थी। खैबर पख़्तूनख़्वा में सदर आइन तहत एमरजेंसी लॻाई। फैसल करीम कुंडी परफॉर्म न कयो त तब्दील थी वेंदो। नाकामीअ जी का बि गुंजाइश न आहे, रुगो कामयाबी घुर्बल आहे। सेनेटर फैसल वाडा केपीअ जे गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ खे वार्निंग ॾींदे चयो आहे त फैसल करीम कुंडीअ जी कारकर्दगीअ जो जाइज़ो वठंदो रहंदुसि। नाकामीअ जो को बि जवाब न ॿुधंदुसि। पाकिस्तान ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदड़नि जा नसुल तबाह करे छॾींदासीं। 180 ॾींहं घणा आम आहिनि, ही पार्ट 1 आहे, पार्ट 5 बि थी सघे थो। जमहूरियत खे हलाइण लाइ बचा जमूर आणणो पवंदो। पाकिस्तान खे रीबोट करण वारो ऑप्शन ॾिसी रहियो आहियां। अवाम हाणे नारनि जे पुठियां ख़्वार न थींदो।
8: They got no ships, they got no nothing, they got no leaders even. That's the problem. We might have gone too far with the leaders because we don't know who the hell we're dealing with anymore. Nobody wants to be the president of Iran. They have roll calls. Who would like to be the president? Nobody. I don't want it. We're having a hard time figuring out who the hell to deal with, to be honest with you. I think we went too far, Bernie. Could have stopped at level one. Level two and level two and a half is probably going too far.
7: अमरीकी सदर ईरानी क़यादत खे निशानो बणाइण लाइ हद पार करण जो एतिराफ़ करे वरितो। रूस ऐं चीन पारां ईरान जी मदद कयो आहे त ईरानी क़यादत खे निशानो बणाइण में अमरीका हद खां निकिरी वियो। हाणे जंग जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि में मुश्किलात जो शिकार आहियूं। चीन ऐं रूस ईरान जी मदद न करे रहिया आहिनि। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादीअ चयो आहे त अमरीका जे जवाब जो जाइज़ो आख़िरी मरहले में आहे, जल्द जवाब ॾिनो वेंदो। यमनी हुसैन पारां हिकु भेरो ॿीहर सऊदी शहर रियाज़ खे निशानो बणाइण जी दावा। खमेस मशीत में बि फ़ौजी अॾे ते हमिलो। सऊदी अरब तज़दीक न कई। OIC सऊदी अरब ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहिनि। आला अदलिया में जजिस जी मुक़ररीअ लाइ सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जी सदारत हेठि जुडिशियल कमीशन जो इजलास। सिंध हाई कोर्ट जे आइनी बेंच जे मुदे में हिकु साल वाद जी मंज़ूरी। इजलास में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी राणा सना लाइ पहिरियों भेरो शरीक थिया। ज़रियनि मूजिब चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो आदर भाउ बि कयो। कमीशन वकील अहसन बोन जी डिग्री बि तस्दीक करे छॾी आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां चीनी शहर वुहान में जदीद टेक्नोलॉजीअ वारनि मुख़्तलिफ़ मर्कज़नि जो दौरो। सिंध हुकूमत जो मसनूई ज़हानत, डेटा सेंटर्स ऐं टेक्निकल तरबियत वारनि शोबनि में सहकार वधाइण जो फ़ैसिलो। स्मार्ट गवर्नेंस ऐं मसनूई ज़हानत खे हथी ॾियण लाइ चीन सां सहकार जी तजवीज़। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध हुकूमत रुॻो टेक्नोलॉजीअ जी ख़रीद नथी चाहे, मुकमल तरबियत ऐं सहकार जी ख़्वाहिशमंद आहे। डिजिटल मईशत लाइ जदीद कंप्यूटिंग ताईं रसाई ज़रूरी आहे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वीअ सां यूरोपी यूनियन जे हिजरत बाबति कमिशनर जी मुलाक़ात। ॿितरफ़न लाॻापन ऐं इंसानी स्मगलिंग खे रोकण ते ॻाल्हियूं। यूरोपी कमिशनर पारां इंसानी

0: स्मगलिंग रोकण लाइ पाकिस्तान पारां खयल कदमनि जी वाखाण मोहसिन नकवीअ चयो त इंसानी स्मगलिंग जे मुकमल ख़ात्मे लाइ गॾिजी कमु करणो पवंदो। मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जूं समूरियूं बोगियूं पटड़ीअ तां लही वयूं, छह मुसाफ़िर फोत, केतिरा ई ज़ख़्मी। रहमान बाबा ट्रेन कराचीअ खां पिशावर वेंदे मुल्तान वटि हादसे जो शिकार थी। ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफ़िर सवार हुया। रेलवे इख़्तियारनि पारां हादसे में छह मुसाफ़िरनि जी तसदीक करे छॾी। ट्रेक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते डुख जो इज़हार। ज़ख़्मियुनि खे बहितर तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत।
1: त जंहिं तरीक़े सां गनशॉट थियो आहे ज़ाल मुड़ुस खे, उन ॿार जेके आहिनि उहे उन्हनि खे नशावर शइ ॾिनी वई आहे, प्लस में सुसाइड नोट जो मिलनि ऐं यादि रहे की इहो सुसाइड नोट हैंड रिटन नोट आहे, को टाइप रिटन नोट या प्रिंटेड नोट न आहे। ऐं जॾहिं घर मालिकान आया आहिनि पोइ ज़ोर सां खड़कायो अथनि, नेठि दरवाज़ो तोड़ियो अथनि। बॉडी जो पोस्टमार्टम हाणे बि थी रहियो आहे, हर एंगल खां ॾिसंदासीं जेके हक़ीक़त वञनि था तोसां शेयर कजो।
0: मलीर जे फलकनास सोसाइटीअ जे घर मां हिकु ई कुटुंब जे पंज भातियुनि जा लाश हथ फोतुनि में। घर धणी शाहज़ेब, संदसि ज़ाल सबा, भेण शुमाइला, मासूम धीअर आर्या ऐं आयज़न शामिल। पुलिस जो चवणु आहे त ॿिन्ही ॿारनि ऐं नारीअ शुमाइला खे ज़हर ॾेई मारण बाद घर धणीअ शाहज़ेब ज़ाल खे क़तलु करण बाद आपघात कयो आहे। घर जो दरवाज़ो बि अंदरां बंदि हो। इलाइक़े वासियुनि ॿुधायो आहे त शाहज़ेब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो। आज जी सिंध वाक्य जो नोटिस वठंदे डीआईजी ईस्ट खां रिपोर्ट तलब करे वरती। कारोबारी माण्हुनि खां भतो घुरण जी शिकायतुनि ते पुलिस कानून कदम खणण खां छो थी कीबाए? छा पुलिस जो कम ॾोह जी एफआईआर दाख़िल करण न आहे? सिंध हाईकोर्ट पारां डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठाण ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। घोटकीअ में पंप मालिक खां भतो घुरण वारे मामले जी नई एफआईआर दाख़िल करण जो हुकुम। अदालती हुकुम ते दाख़िल थियल एफआईआर बी क्लास छो कई वई? डीआईजीअ खां सुवाल। घोटकी बी सेक्शन थाणे जे अॻूणे एसएचओ रफीक सिलरो ऐं जांच आफ़ीसर मुख़्तियार अहमद जोगीअ खे मुअतल करण जो बि हुकुम। अदालत चयो आहे त ॿिन्ही आफ़ीसरनि ख़िलाफ़ खातेवार कार्रवाई करे ॿिनि हफ़्तनि में रिपोर्ट पेश कई वञे। खेरपुर जी शाह लतीफ यूनिवर्सिटी में दाख़िलनि लाइ एंट्री टेस्ट 4000 खां वधीक उमेदवारनि जी शिरकत। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया एंट्री टेस्ट दौरान कापी रोकण में नाकाम। पाबंदीअ बावजूद शागिर्द टेस्ट दौरान मोबाइल फोन जो सरेआम इस्तेमाल कंदा रहिया। सिक्योरिटी इंतिज़ाम सख़्त रहिया। कराचीअ में सीटीडी ऐं एहसास इदारनि जी गॾियल कार्रवाई। 4 शकी दहशतगर्द गिरफ़्तार। सीटीडी तर्जुमान मूजिब शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सीटीडी ऐं वफ़ाक़ी सिविल दौरान पाबंदी मरियल तंज़ीमुनि जे चइनि दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। गिरफ़्तार दहशतगर्दनि में ग़ुलाम हुसैन, आफ़ताब अहमद ऐं शुएब समेत 4 ॼणा शामिल आहिनि। तर इदारनि ते हमलनि जी रथाबंदी करे रहिया हुआ। खेरापुर में बदअमनीअ ख़िलाफ़ किंगरी तालके जे 20 खां वधीक स्कूलनि जे उस्तादनि जो धरणो। उस्तादनि वधंदड़ बदअमनीअ ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे शाह हुसैन बाईपास वटि धरणो हयो। कोटड़ीजीअ में बि बदअमनीअ ख़िलाफ़ रिंद बिरादरीअ जो मेराण हाईवे ते एहतजाज। इलाइक़े में अमन अमान बहाल कराइण जो मुतालबो। हैदराबाद में मदीना टाउन वासी औरतुनि जो पुलिस जे मुबैना ज़ियातियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज। घरनि ते चढ़ाई करे नौजवान खे गिरफ़्तार करण जो इल्ज़ाम। औरतुनि मूजिब पुलिस बिना जवाब घरनि ते चढ़ाई करे नौजवान खे खंभे गुम करे छडि॒यो आहे। गिरफ़्तार
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
5: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी।

0: हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ए हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलियत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम ए डीह हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GAFM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GAFM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

जी जनाब कमर्शियल ब्रेक ना वधी रहा आयो महफूज शाह असन के बुदे पे सीनियर सहाफी बदीन का भली कर महफूज शाह गुलाम रहीम बलोच मिठी थरपार कर झुड़बी का बुदे पे थैंक यू

0: अवाजी स्किन।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
0: अवांजी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवांजी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

पसंद आसी त असांखे केरु महिरबानी आहे जेको मैसेज मोकिले थो। ॻोठ मोहम्मद हयात शंभाणी खां असांखे ज्वाइन कयो आहे मोहम्मद बचल, मोहम्मद मिठल ऐं सभागो खान ऐं राजा गुलाम कंबर शंभाणी। अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानी, वॾा वॾा मोहबतूं अवां जूं भलीकार चवंदासीं तव्हांखे। ऐं मोहम्मद साले लगारी सां गॾु खां ॿुधे पियो, लालबख्श लगारी, बिलावल लगारी, उसामा लगारी, किरणे कुर्ब अवां जा। ऐं जेका बाद खां असांखे ज्वाइन कयो आहे, जी हा, रहमत अली जखराणी ॿुधे पियो ऐं शौकत अली जखराणी, अव्हांखे प्रोग्राम पसंदि आहे, मां अव्हां जो शुक्रगुज़ार आहियां। मोहबतूं मिठा माण्हू ऐं खबड़ी भिट खां असांखे ज्वाइन कयो, साले पट तालके

ले सांगड का इरफान अली थेबो साहब सोना साई मोहब्बत ताजो है जुग जुग जियो अवा जेला इही दुआऊं सदाई सुख माणियो आबाद होजो। गोटे पुनू खान पंवर का असा के ज्वाइन कयो रोस्तम अली पंवर अवा प्रोग्राम जेला लिखियो त प्रोग्राम सठो है तमाम घणी मोहब्बत अवा जो सोना साई जैसे प्रोग्राम तक सुठो लगे तो अभी तुक्रगुजार आयो तमाम घड़ी मोहब्बतों अवी मेहरबानी जो तुम प्रोग्राम के पसंद कर पाया थैंक यू मेहरबानी अवज लख ओके जनाब साज आवाज के साथ में एक जबरदस्त ट्रैक भी है जो शामिल कदी अवज उन ट्रैक उन ब्रेक का वरी भी ट्रैक हों पर अस कोशिश क्यों पाया तेरी जी मैसेजेस अस अची चुका हुजन उन शामिल कर वूँ सो ट्रैक बिल्कुल रेडी फॉर योर सुमरो जो आवाज़।

जी जनाब घोटकी का गुलशेर मंगरियो साहब चवे तो अदा यूनस अस्सलाम वालेकुम जो हाल छा है मां जो हाल ठीक है ता खुश आयो चंगा भला मतारा जोड़ ता मुझे आवाज अंदाज शो के पसंद कयो है किरोड़े कुर्ब मिठा मानो अवां घोटकी का सके ज्वाइन कयो है तमाम तमाम घणी मेहरबानी भा गुलशेर मंगरियो साहब जुग जुग जी।

ऐं नोटो खां असांखे नंढड़ी रवीना कुमारी ॿुधे थी, कमलेश कुमार, रजीना कुमारी, रामचंद कुमार भलीकार।

साज ऐं आवाज़ जो सा उहो रेडियो जेको बिना ब्रेक आहे उन रेडियो जो नालो आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क। हिकु ई वक़्तु सॼी आवाज़ नफ़ीस खटी असांखे ॿुधे पियो मियापोटा तलहार खां भलीकार साज़ ऐं आवाज़ ऐं साथ जो हिकिड़ो ट्रैक ॿियो बि तव्हांजे लाइ रेडी आहे उनखे ॿुधंदासीं कुझु मैसेजिस बि शामिल कंदासीं पर हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ॾांहुं। जॾहिं हीउ ट्रैक ॿुधी वठंदासीं त पोइ न्यूज़ ब्रेक हूंदो, न्यूज़ ब्रेक खां पोइ कमर्शियल ब्रेक हूंदो, कमर्शियल ब्रेक खां पोइ अवां सां कलाक। कहिड़ो नंबर हूंदो जंहिं ते अॼु कॉल्स वठंदासीं उनजो इंतज़ार कजो, नंबर तव्हांखे असां ॿुधाइण वारा आहियूं। जी जनाब, बसि जीअं पियो तुंहिंजे यादुनि में।

सिराज खास के लिए सके ज्वाइन किया है गोडा आज ही सहतो का आज ही सहतो बुदे पे भलीकार तमा लिखे है तो शाहनवाज खास के लिए सलाम वालेकुम असलाम थैंक यू वेरी मच भलीकार मोहब्बती है मिठा मानो मोहब्बत हूं बदीन का बखर सीराणी का सखर कींझर का कारूंझर केटी बंदर का कश्मोर ताई मेरपुर खास का मोरो ताई जिन जिन लाइकन वाहिणन रस्ते ने बस्तियन में असी बुधू या बुधा प्या वनो अई अमी बुधो प्या ता सबनी के भलीकार।

गोठा जी सैतो खां असांखे ॿुधी रहिया आहिनि सरोज खासकेली, शहबाज खासकेली ऐं साले सोलंगी भलीकार, ताज मोहम्मद सैतो अवांजी मोहबतूं ऐं आसिफ सैतो अवांजी तमामु घणी महिरबानी, थैंक यू असद सैतो ऐं हाजी सैतो साहिब तव्हांजूं तमामु घणियूं मोहबतूं, भलीकार भलीकार।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैनी कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार TB बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
5: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन ते
6: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
7: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
8: उसी खित्ते की बनी है आवाज
7: GA FM नेटवर्क
8: सिंध की आवाज

0: प्रोग्राम ॿुधे पियो मुंहिंजो मामू कामिल बि तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो
1: किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू किरोड़े कुर्ब जी जनाब जी जनाब साज ऐं आवाज़ जे साथ में हिकड़ी कॉल आहे ॾिसंदासीं त उहा कॉल कंहिंजी आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: केरु साहब ऐं किथां खां
2: इरफान अली थिए गुलाबी संगत खपड़ी बीट तालका साले ज़िला सखर खां
1: तमामु घणी महिरबानी इरफान अली थेवा साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला मतारा जोड़
2: अलहमदिल्ला बिल्कुलु ठीक ठाक लॻा पिया आहियूं तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो ठीकु आहियो
1: रब पाक जा किरोड़े करम आहिनि अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
2: सलाम सिस्टर मिसिस अली ऐं सिस्टर दुआ खान हुन खां पोइ रायत सुमरो मसा सुमरो हुसैन बगिरो आफ़िस गुलाम अहमद सांबल बचल थे अंबानी नज़ीर मंगरियो सिकंदर थे अंबानी अब्दुला बंगवार जेके दोस्त ॿुधनि था सभिनी खे इरफान अली थिए पारां खोड़ सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम
2: दोस्तनि खे बि रिक्वेस्ट आहे त ईअं स्पीड में नाला खणनि छा हुन खणनि त जीअं दोस्तनि खे टाइम बची मिले
1: असांजी इहा ई ख़्वाहिश आहे प्रकाश तव्हां वांगुरु ॿिया बि अमल कनि साईं
2: हा यूनिस भाउ तव्हां ॾिसंदा आहियो त मुंहिंजा जेके नाला हूंदा आहिनि भले ॾह बि नाला हुजनि त मां कोशिशि कंदो आहियां त उहे नाला मां जल्द खां जल्द खणी वठां ईअं न आहे असांखे सिर्फ़ु नालो ऐं ज़ात खणणी आहे दोस्त जी असां हुनजी एड्रेस न ॿुधायूं त टाइम बचे
1: हा बिल्कुलु काफ़ी दोस्त वरी एड्रेस ॿुधाईंदा आहिनि जहिड़ो शनाख़्ती कार्ड ठाहिण वारा कोन हूंदा
2: मां जीअं चवां त यूनिस भाउ ॿुधे थो असांखे यूनिस बकारी बदीन मातली में बाबर भाउ असांखे ॿुधे थो सखर शहर में नाला न खणूं न
1: हा उहो ख़ाली दोस्तनि जा नाला खणनि हाणे वरी ईअं त पोइ आरजे वारो कमु लिसनर करे त पोइ फ़र्क़ु कहिड़ो थियो
2: हा बिल्कुलु यूनिस पासो इनशाला दोस्त सम्झी वेंदा ऐं नाला भले सभिनी दोस्तनि जा खणो पर हुननि जी एड्रेस न कयो
1: सही ॻाल्हि आहे सही ॻाल्हि आहे सही था चओ थैंक यू सर
2: थैंक यू
1: तमामु घणी महिरबानी इरफान अली थेवे साहब ॾाढो सुठो मशवरो ॾिनो त दोस्त फ़क़त पंहिंजे दोस्तनि जा नाला खणनि बल्कि हिन जे उबतड़ खणनि था उन्हनि जी एड्रेस वठनि था ॻोठ जो नालो वठनि था जेको आरजे जो कमु आहे उहो बि लिसनर जे करे कनि त पोइ आरजे ऐं लिसनर में ॻाल्हि त हिकु जहिड़ी हूंदी कहिड़ी नई शइ असां पेश करे सघंदासीं बिल्कुलु इरफान सही ॻाल्हि चई तव्हां इनशाला दोस्त अमल कंदा कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम तुंहिंजो साथ सितारनि वांगुरु मुंहिंजो साथ निमाणनि वांगुरु तुंहिंजो साथ सितारनि वांगुरु मुंहिंजो साथ निमाणनि वांगुरु दर्शन तुंहिंजो कीअं कयां मां दूर रही थो तारनि वांगुरु
1: तमामु घणी महिरबानी केरु साहब ऐं किथां खां
3: अगरि साईं रोड़ी सखर खां नज़ीर मंगरियो
1: छा हाल आहे मंगरिया साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अलाह पाक जा अलहमदिल्ला उहा जी दुआ लॻी पई आहे बिल्कुलु हशाश विशाश
3: प्रोग्राम
1: तमामु घणी मोहबतूं आहिनि तव्हांजे ॿुधण जो अंदाज़ ख़ूबसूरत आहे थैंक यू वेरी मच अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
3: इरफान अली थेबो आहे शौंकत अली रहमत अली जखाणी
1: आहे
3: चोहन कुमार कोलिया ऐं अब्दुला बंगवारा सिकंदर अली शबानी गार मोहम्मद अजल शबानी इरफान थेबो खे सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू थैंक यू भली ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क मां ॿुधो पिया पंहिंजो ई शो सिंधड़ीअ जी शान कॉल करणु चाहियो था त नंबर आहे 0334352578 6 ॿुड़ी 334 35 25 786 ते हाणे ई कॉल

0: ॾिसण रासी त कॉल ते असां केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। साईं अलहमदुल्ला, तव्हां केरु साहिब ऐं किथां खां? तमामु घणी महिरबानी उनास साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला। अलहमदुल्ला, अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो गॾिजी ॿुधे साईं?
1: रस्तम अली चांवर, रोशन अली चांवर, हुन सां गॾु गुलाम रहीम बलोच, सोवन कुमार कोहली ऐं हिन सां गॾु मुंहिंजे फैमिली जा मेंबर आहिनि, जंहिं में आरजी असलम जलालाणी, मुख्तार नाथ जलालाणी, महबूब नाथ जलालाणी, शिजात हुसैन जलालाणी, अख्तियार हुसैन जलालाणी, जवाहर नसीम रज़ा जलालाणी ऐं ज़ीशान हैदर जलालाणी।
0: तमामु घणियूं मोहबतूं, महिरबानी, लख थोरा सुहिणा साईं, शाद हुजो, आबाद हुजो।

0: 0334352576 ते कॉल ॾिसंदासीं त हाणे कंहिंजी कॉल आहे. हैलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम सलाम, खीतर जबल खां अलिया चांडे पियो ॻाल्हायां.
0: छा हाल आहे चांडिया साहब, ख़ुशि आहियो?
1: अलहमदिल्ला, तव्हां ॿुधायो.
0: अलहमदिल्ला, उहा असां कॾहिं केरु पियो ॿुधे?
1: जी जी, मुंहिंजो कज़न आहे बदरदीन चांडियो, और भाउ आहे चांडियो.
0: जी जी,
1: अदनान चांडियो, ज़ुल्फ़िकार जमशेद चांडियो.
0: महिरबानी, लख थोरा किरोड़े कुर्ब साईं, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो. जी जनाब, कॉल ते हलंदासीं, ॾिसंदासीं त कॉल ते असां गॾु केरु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: केरु साहब ऐं किथां खां?
2: जी करीम मला, सैदपुर टक्कर खां.
0: छा हाल आहे मला साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? सैदपुर टक्कर जा कहिड़ा हाल आहिनि?
2: जी अलाए शुक्र आहे, तमामु बहितरीन लॻा पिया
0: आहिनि. हा, असांखे ॾियो केरु पियो ॿुधे?
2: जी असांजो चाचो आहे मोहम्मद बचल मला, ॿुधे वियो आसिफ अली मला, जेके बि दोस्त ॿुधनि पिया उन्हनि सभिनि खे अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, किरोड़े कुर्ब सोना साईं, किरोड़े कुर्ब, लख थोरा अवाजा. साज़ ऐं आवाज़ी साथ में ज़बरदस्त ट्रैक शैला गुल जो ॿुधूं पिया, जंहिंखां पोइ हलणा आहियूं हिकड़े ब्रेक ॾांहुं. हुन ब्रेक खां पहिरीं हिकड़ी कॉल अटेंड करे था वठूं. हलो, अस्सलाम अलैकुम.
3: वालेकुम सलाम.
0: केरु साहब ऐं किथां खां?
3: अक्रम वारी जते जो ॻाल्हायां, सकर खां.
0: छा हाल आहे साईं, ख़ुशि आहियो अक्रम साईं?
3: प्रोग्राम ॿुधंदा
0: प्रोग्राम लजपत आहे.
3: मुंहिंजो भाउ आहे नंढो जते, उहो बि मां सां गॾु ॿुधे थो. मुंहिंजा थोरी जतो ई आहे जेके खोड़ सारा सलाम ॿुधंदा कुलनी जी मुंहिंजी तरफ़ा.
0: तमामु घणी महिरबानी, लख थोरा साईं.
3: जलाल चांडे जो कलाम जो
0: हाज़ुर हाज़ुर हाज़ुर, जलाल चांडे ॿुधाईंदासीं. ओके जनाब, कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं. कमर्शियल ब्रेक दौरान बिल्कुल कॉल न कजो, जॾहिं मां वेलकम चवंदुसि वरी अचां. तेसि ताईं थोरो इंतज़ार कजो, केॾांहुं न वञिजो. प्रोग्राम आहे जारी ओ सारी, नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो यूनुस बकारी.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
2: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
1: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लो
4: ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
7: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
8: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
7: जीए FM नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: पियो उन नंढड़ो नवाज जंहिंजी ॿुधे पियो ऐं उन खां पोइ मुंहिंजो दोस्त मुर्तज़ा मेमर साहब तव्हांखे ॿुधे पियो
1: जी जी
0: ऐं नंढड़ो भाइटो अली अहमद जंहिंजी तव्हांखे सलाम ॾिए पियो ऐं चए थो चाचे खे चओ असांखे को फौजिया सुमरो जो को कलाम ॿुधाए।
1: वालेकुम असलाम, फौजिया त असां हाणे प्ले करे चुका आहियूं, बाक़ी कोन को गानो नंढड़े जे लाइ प्ले कयूं। हाज़ुर साईं।
0: मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे ऐं अलाह साईं खां ई दुआ त तव्हांजी नशरात अञा बि अॻिते हली कामयाबी मारे।
1: आमीन सुम आमीन, दुआ कजो साईं, अञा सिखूं पिया, दुआ कयो। लख थोरा साईं। जी जनाब, कॉल्स जो सिलसिलो जारी आहे, मोहबतुनि जो सिलसिलो जारी आहे ऐं कॉल ते ॾिसंदासीं त केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम साईं।
1: केरु साहब भई, किथां खां?
2: जी साईं, मां मोहम्मद आचर ख़ासि ॻाल्हायां, ॻोठ बहादुर ख़ासि जोड़ी खां।
1: छा हाल?

0: असां साईं मिठा माण्हू ख़ुशि आयो।
1: अलाह जी महिरबानी आहे साईं, तव्हां ॿुधायो, तव्हां ख़ुशि आहियो, तव्हांजी पूरी टीम ख़ुशि आहे?
0: कहिड़ो ॾींहुं कुर्ब तव्हांजा? बिल्कुलु ख़ुशि आहियूं। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: रोस्तम अली पवारा, दिलीप कुमारा, हैदर भटिया, कुर्बान ख़ास केलिया, जेके बि संगत ॿुधे भई सभिनि खे सलाम आहे। सर मोरे ते तव्हांजो प्रोग्राम छो नथो थिए? मोरो ते
0: हलंदो हूंदो, को टेक्निकल मसलो हूंदो साईं?
1: न, यको कोन्ह थोले, ॿ टे महीना थी विया आहिनि।
0: चलो मां पुछा कंदुसि, थी सघे थो को मजबूरी हुजे, को सबबु हूंदो, हाज़ुर असां पुछा कंदासीं। थैंक यू सर,
1: वॾी महिरबानी। प्रोग्राम तमामु बहितरीन आहे, इहो हलायो न मोरो ते बि।
0: कोशिश कयूं था। हाज़िर साईं, हाज़िर हाज़िर। आबाद हुजो, आबाद हुजो। थैंक यू वेरी मच साईं। त पई दोस्तो, महिरबानी क़दरदानो, 0334-3525 कॉल कयो, ॾिसंदासीं त केरु महिरबान आहे जेको ॿुधे थो। ॾिसूं था कॉल। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, मिठा माण्हू गलूरी खां ख़ालिक लाशारी ॻाल्हायां
0: थो। छा हाल आहे ख़ालिक लाशारी साहिबु? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला? अलहमदुल्ला। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
2: कहिड़ो
0: ॾींहुं कुर्ब सभिनी जा? महिरबानी मिठा माण्हू, थैंक यू। लख

0: जी जनाब कॉल ते रिसनासी असागर केर आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: जी वालेकुम सलाम
0: केर साहब है किथा का
1: ठीक कर रे वाला बाबा चांडियो साहब तो बनाया
0: बाबर चांडियो साहब पियो कराए जी बाबर चांडियो साहब पियो आवा सके केर पे बुदे
1: जुदा दोस्तन रबन चांडियो दस्कार जख्मी हम जाकर चांडियो इम्तियाज चांडियो
0: मेहरबानी मेहरबानी लख थोर मेहरबानी मिठो मानू मेहरबानी लख थोर साईं जी जनाब ॾिसंदासीं त वरी कॉल ते केरु आहे असां सां गॾु इहो मोहबतुनि जी बरसाति आहे मोहबतुनि जो सिलसिलो जारी आहे ॾिसूं था त केरु आहे असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम बदरदीन चांडिया साहब वेलकम था चऊं अव्हां खे भलीकार ऐं असां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
2: साईं मुंहिंजो सोट हरियार चांडियो ज़ुल्फ़िकार चांडियो अदनान चांडियो
0: जी जी
2: फेबल चांडियो फहीम चांडियो
0: जी जी महिरबानी थैंक यू साईं

0: जनाब ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते केरु आहे असां सां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम। छा हाल हाफ़िज़ ज़ोहैब साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला? अलहमदिल्ला, अलाह साईं जा अहसान आहिनि। रहमतपुर मोहलो लाड़काणो कीअं, ठीकु आहे?
1: ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मौसम वीआईपी थी वई आहे, ज़बरदस्त वीआईपी सफ़ा।
0: हा, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे साईं?
1: असां सां गॾु ॿुधे पियो साईं सिराज सूमरो, फरहान बेरो, आसिफ चाचाड़ो, उतामा जागीरानी, अतर सोलंकी, ज़ैब कटबर, इन खां अलावा शोएब कटबर, जुनेद कटबर, ज़ैनुलाबदीन कटबर।
0: तमामु घणियूं मोहबतूं ऐं महिरबानी सुहिणा साईं,
1: ख़ुशि
0: हुजो, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो।

0: जी जनाब कॉल ते हलंदासी ॾिसंदासी केर आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, केर साहब ऐं किथां खां? रुस्तम अली पवर साहब खे भलीकार चवंदासीं साईं। अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे?
1: साईं तव्हांजो प्रोग्राम तमामु ज़बरदस्त पिया ॿुधूं ऐं कुझु दोस्त पिया
0: ॿुधनि।
1: शौकत अली जखराणी, रहमत अली जखराणी, इरफान थेबो, चोवन कुमार कोहली, दिलीप कुमार मेघवाल, मोहम्मद आचर खासकेली, कुर्बान अली खासकेली, अब्दुरहमान लगारी, मलक मोहम्मद बलोच, मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो, प्यार अली लुंडनाज, फकीर मोहम्मद जलालानी।
0: कहिड़े कुर्ब मिठा माण्हू, कहिड़े कुर्ब लख थोरा तव्हांजा। साज़ ऐं आवाज़ जो साथ सिंधड़ी जी शाम, यूनुस बकारी जो सलाम। जी जनाब कॉल ते हलंदासीं ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो जी जी चंडिया साहब, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो?
2: अलहमदुला शुक्र दुआ साईं, तव्हांजो तव्हां पंहिंजा हाल हाल ॿुधायो। जिन सां ख़ुशि आहियो, टाइट मज़े में अमुन
0: अलह साईं जा अहसान आहिनि। तव्हां सां कॾहिं बि केरु पियो ॿुधे मिठो माण्हू?
2: मुंहिंजा भाइर अलादा चांडियो, मौलादा चांडियो, मुंहिंजो प्यारो दोस्त ज़ुल्फ़िकार चांडियो, इम्तियाज़ चांडियो,
0: जी जी
2: बलोचिस्तान ॿुधे पियो, मुमताज़ चांडियो, बाक़ी जेके ॿुधी रहिया आहिनि सॼी संगत खे सलाम।
0: तमामु घणी महिरबानी। वालेकुम असलाम, वालेकुम असलाम ऐं वालेकुम असलाम।

ओके जनाब, तपाईँ कल जो सिलसिलो जारी अहिले सुताता सदाकर कल त के रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।

0: जी जनाब, साह जो सगड़ो सलामत हूँ तो सदाई तरह से गड हूँ। गाने में आए थे जी मैं हमेशा मोकलाए तो वे, पर हकीकत में यो ट्रैक है जामिन अली जो ट्रैक है। इनके इंजॉय भी करो पर दर्दी ले ट्रैक के इंजॉय दर्द वारा ही कंदा। फिलहाल दिसों दा कॉल ते ऐसा कर के रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम दा
0: जी। केर साहब है किथा का? कुर्बान है तुझे आवाज सफा घट पे अच्छी छाजे करे कावड़ा है छा है
1: ताई। हाँ आवाज सही बोलती रहा।
0: आवाज हाँ सही बोलती है। हाँ आवाज सही है। आवाज सा गड़बी केर पे बुदे
1: दिलीप कुमार मेघवाड़ काठी का गुलाम रसूल परी अजीज सरकी खालिक लाशारी
0: जी मज़ीस दोस्तों, छा मुझे आवाज अवां ताईं पहुचे पियो? जेकॾहिं हा त ॿुधायां त ही आवाज़ जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम नेटवर्क तव्हां ॿुधो पिया। कॉल ते ॾिसंदासीं अगरि केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: कची पुल खां अदनान चांजो।
0: जी कची पुल खां अदनान चांजो साहब, अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे? तबियत सही आहे शुक्र अलहमदुलिल्लाह। तव्हांजी दुआ आहे। तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? जी जी
2: जमाल खान ॿुधे थो हाजी मरी खां।
0: महिरबानी लख थोरा सोना साईं। जी जनाब, थैंक यू लख थोरा। जी जनाब, ॾिसंदासीं त हाणे असां गॾु कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर, कहिड़ा हाल आहिनि?
0: अलहमदुल्ला। केरु साहब ऐं किथां खां?
3: इतर जबल खां इम्तियाज़ चांडिया पियो ॻाल्हायां।
0: इम्तियाज़ चांडिया साहब, अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे?
3: सर, इहो मुंहिंजा दोस्त आहिनि, ॿाहिरि आहिनि, ज्ञानदार चांडियो।
0: हा,
3: मंताज चांडियो।
0: जी जी।
3: बाबर चांडियो।
0: जी जी। महिरबानी लख थोरा सोना साईं, लख थोरा।

0: जी जी नाला वठो ना अचो जी नाला वठो नाला वठो
1: मत भुट्टो
0: हाँ हाँ
1: जी मजीद भुट्टो
0: जी जी वालेकुम असलाम किरोड़े कुर्ब मिठो मानू थैंक यू लख थोरा खुश हो जो आप ओके जनाब हिकिड़ो ॿियो ट्रैक रेडी आहे क्यू शीट में उहो ॾिसंदासीं उहो ट्रैक कहिड़ो हूंदो वठी था वठूं ॾिसूं था कॉल ते बि केरु आहे असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केरु साहिब आहीं किथां खां छा हाल आहे खाखड़ साहिब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो शुक्र अलहमदुल्ला अव्हां जी दुआ लॻी पई आहे ॾियो ख़बर थर जूं भोरियूं भिटूं ख़ुशि आहिनि इन ई करे दुआऊं कीअं कंदियूं हूंदियूं पाण त थर जूं भोरियूं भिटूं उदास हूंदियूं न यार हा भला अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे नाला वठो दोस्तनि जा
1: सुलेमान खाखण
0: हा
1: मोहम्मद हसन अज़ीज़ुल्लाह हफ़ीज़ुल्लाह रज़ाउल्लाह ऐं शादी खान खाखण
0: हा ठीकु आहे महिरबानी साईं
1: जी असांजो पुराणो लिसनियर ॿुधे पियो ताहिर मोहम्मद जंजी
0: मोहम्मद ताहिर जंजी साहिब जूं महिरबानी ॿुधे पियो लख थोरा थैंक यू वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम ॿुधंदो हूंदो बल्कि हू चवंदो हूंदो वालेकुम सलाम चओ थोरी देरि अॻु में कॉल कई वई आई किरोड़े कुर्ब किरोड़े कुर्ब सुहिणा साईं किरोड़े कुर्ब तव्हांजा थोरा जी जनाब अच मुंहिंजा प्यारा अच तुंहिंजे अचण सां ईदूं थींदियूं हाय हाय ओके जनाब कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम केरु साहिब ऐं किथां खां जी प्यारली ऐं असां गॾु केरु पियो ॿुधे
1: सलाम ॾियणु चाहींदासीं रोस्तम अली पवार खे दिलीप कुमार मेघवाल खे बलकमत बलोच खे ऐं ॿिया जेके
0: महिरबानी महिरबानी लख थोरा थैंक्यू अने सलाम हवाउनि जे आधार पहुची विया जीअं जीअं टाइम ख़तम थींदो वञे तीअं तीअं कॉल्स जो तइदाद वधंदो वञे कॉल ते ॾिसंदासीं असां गॾु केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम केरु साहिब ऐं किथां खां तैयब चांडियू साहिब कीर्थर जबल जा कहिड़ा हाल आहिनि ठीकु आहे अलहमदुल्ला अव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे
1: सौट आहे बदरदीन चांडियो
0: हा
1: अलियार चांडियो ज़ुल्फ़िकार चांडियो
0: जी जी
1: अदनान चांडियो
0: जी जी
1: ज़ुल्फ़िकार चांडियो
0: महिरबानी लख थोरा साईं
1: प्रेम चांडियो
0: थैंक यू कुर्ब तव्हांजा ॾुखियासीं ॾुखियासीं कोन आयो लुछियासीं पुछियासीं कोन आयो उमेदूं हुयूं जंहिंमें वॾियूं जलियासीं मुआसीं कोन आयो फ़क़त उन जे ख़ुशीअ ख़ातिर सभई पंहिंजा छॾियासीं छिनासीं कोन आयो फ़िलहाल काल ते ॾिसूं था केरु आयो हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: साईं केरु साहिब ऐं किथां खां
2: मोहम्मद बचर छंबाणी घोट मोहम्मद याद छंबाणी तालको साले पट खां सर इलाही कोशिश कई आहे तव्हांजे नंबर मिलाइण जी एॾो नंबर मसरूफ़ आहे छा ॿुधायां सर मां
0: सुहिणा साईं इहे मोहबती माण्हू आहिनि मोहबतूं कनि था छा करियूं भला
2: बसि असां बि हार न मञोसीं मां चवां कोशिश कयूं त हला अगरि लॻी वञे हाणे सफ़ा मदद थी वियासीं
0: कोशिश कामयाबी जी कुंजी आहे
2: हा बिल्कुल कामयाबी जी कुंजी आहे मां ॾिसूं उहा कीअं पाए को सही आहे मुंहिंजो ग़लति आहे कोशिश कामयाबी जी कुंजी आहे कामयाब थियूं था या न
0: था बिल्कुलु ईअं हूंदो आहे न कॉल हले पई त पोइ ट्राए कंदा रहो तव्हांजी कॉल ज़रूरु लॻंदी बाक़ी ईअं आहे त हाणे इहो माना कंहिं नई नथो चई सघिजे त कॉल हरूबरू न लॻंदी लॻंदी अच्छा आवाज़ केरु पियो ॿुधे
2: हा सर नज़ीर अहमद नमरो इरफान अली

0: थेबो साहब
1: जी जी
0: ऐं ताहिर लुंड साहब अलावर लाशारी साहब ऐं इन खां अलावा ॿियो जिते आवाज़ वञे थो सभिनि दोस्तनि मुंहिंजी तरफ़ां खोड़ सलाम या अली मदद सर।
1: वालेकुम सलाम वाला अली मदद। थैंक यू भली कार साईं।

0: ओके जनाब, इसनासीते कॉल ते केयर आहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
1: सर, किटर जा वाला खा रब नवाज जावर तो वाला यहां
0: जी। छाल रब नवाज
1: खैर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ता वैरन जी दुआ बा।
0: हां आवा सके भी केयर वे बुदे
1: बाबर जांडे जुल्कार जांडे जाकर जांडे अख्तियार जांडे
0: किरोड़े कुर्ब सोना साईं किरोड़े कुर्ब। ओके जनाब, आखिरी लमात शो जाए न मां वणण वारो आया शो मां सो ट्रैक चेंज थी पियो दिसूं ता भला ट्रैक चेंज थियो माना यूनुस बकारी वियो हलियो ओके जनाब तो पोई मोकलाइन जो टाइम थी वियो आहे मोकलाए वठूं या एकड़ी कॉल अटेंड कयूं तकड़ी तकड़ी दिसूं ता कॉल अटेंड कयूं ता। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केड़ा हाल है मिठा मानो
1: अल्लाह की शुक्र है तेरा मानो पांजे हाले तबियत किया मिठा मानो
0: अल्हम्दुलिल्लाह दुआ लगी बे दोस्तन सा तारुफ थी वने ता जो घोटकी शहर का पुनल हुसैन मेहर के भलीकार आखिरी लमात में गडे आयो आखिरी लमात में काल लगी है क्यों केर केर अवा सके बे बुधे पियो बस नालो के जो जल्दी जल्दी वठी वठो छाकाणे मां वणण वारो आ अज पुनल हुसैन मेहर जो आवाज के अज पुनल थैंक यू पुनल थैंक यू पुनल जो आवाज अज क्लियर कोन तो अच्छे शायद सिग्नल जो इशू है पुनल वट केडियूं भी कर वफाऊं पर वफाऊं वफाऊं वफाऊं आई वफाऊं रहंदी जारी ओ सारी फिलहाल मोकलाए तो यूनुस बकारी चंगो यारो यारी मोकल दियो यूनुस बकारी के इंशाल्लाह वरी मुलाकात थींदी मेलो मचंदो तेसी ताईं यार जिंदा सोबत बाकी उस्तादन वालदेन ने वडन जो दुआऊं ने मन जो छाऊं खुशन वारे हवाऊं अवां जो मुकद्दर बनजन साथ सलामत सिक सलामत अल्लाह निगेबान।

0: के पी में समूरा कदम आइन ने मौजिब खया आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत हिकु बि सियासी एजेंडा न आहे। हाणे के पी हुकूमत में दहशतगर्दनि जो को बि हमदर्द न आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर ताला तारण चयो आहे त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ हिक ई मुल्क में ॿ पॉलिसियूं कीअं हली सघनि थियूं। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारण चयो आहे त के पी में दहशतगर्दीअ जे वाकियनि में गणतीअ जोगी बात थी। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में सदर आइन तहत एमरजेंसी लॻाई।
1: के साथ भी यहां बैठ रहा हूं और फिर हमने 18-19 अक्टूबर को मरकजी मजिस्ट्रेट

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जलंधर लाल शहबाज
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: ये FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: वरती वेंदी। ऐं थरकोल ब्लॉक वन में कम कंदड़ पोरियतनि लाइ चोगा हिफ़ाज़ती इंतज़ाम न हुअण सबबि संदन हयातियूं दाउ ते लॻल। इंतज़ामिया जी वेसी सबबि सड़ी फोत थियल पोरियत जे कुटुंब जी बि थरकोल इंतज़ामिया सार न लधी पाए में ज़ख़्मी थियल बियो पोरियत जी बि ज़िंदगी खे ख़तरो बरक़रार। थरकोल ब्लॉक वन में सिलेंडर मां बाहि लॻण सबबि ज़ख़्मी थियल नौजवान जे सोटड़ गुज़िरियल ॾींहुं ज़िंदगीअ जी जंग हाराए पियो हो। बे पोरियत सोहबत ख़ासि करे जी हयाती ख़तरे हेठि इंतज़ामिया ॿिन्ही पोरियतनि खे विसारे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: खुशखबरी हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि एक दफो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां ख़मीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
5: GAFM नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, हैदराबाद 91.6 जो आवाज।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जवाबा।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: GA FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by सुपर वाइब्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: हाल इंतहाई खराब हुई केपी जे अवाम सदाई पाकिस्तान लाइ कुर्बानियूं ॾिनियूं मौजूदात में लाइ पुरज़म आहे।

0: पख्तूनख्वा में गवर्नर राज जी सुभाणे मंजूरी ॾेई छॾी थी। गवर्नर राज जो फैसलो मजबूरीअ में वरितो हो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला जो चवणो हो त ख़ैबर पख़्तूनख्वा में कारकर्दगी ॾेखारण बिना को ऑप्शन न आहे। ख़ैबर पख़्तूनख्वा में गवर्नर राज जी मंज़ूरी लाइ पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास ख़मीस ते थींदो। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ इजलास बाबति समरी सदर ॾांहुं मोकिले छॾी, ज़रियुनि जो चवणो आहे त ख़मीस ॾिहाड़े थींदड़ इजलास मां के पी एम मंज़ूरी वरिती वेंदी।
1: और फिर हमने 18-19 अक्टूबर को मरकजी मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया।
2: हुकूमत ने हमेशा आपको जो है मायूस किया।
1: डॉक्टर साहब जो कमिटमेंट पीजीआई ने की थी वो बरकरार रही, बैठो अच्छी है तो गवर्नमेंट
2: कोई हल
1: नहीं। साहब की आजादी है लेकिन आवाम के आईन सियासत उसूल इससे कोई मुताबिकत नहीं है।
3: पोइ थियो आहे त पार्लियामेंट आई हुकूमत गवर्नर राज ख़िलाफ़ एतिजाज़ रहमान अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ाना चकसई ऐं राजा नासिर अब्बास सां बि मुलाक़ात कई। के पी में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज बाद पैदा थियल सूरत ते ॻाल्हियूं कयूं।

0: 180 दिन का मतलब 180 दिन से पहले पहले 30 डेज में मैं आपके पास आऊंगा, 60 डेज में भी आपके पास आऊंगा, परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके इससे अच्छे आएंगे, इसमें बड़ी क्लैरिटी आ गया है तो वो परफॉर्म नहीं करेगा तो बेटर रहेगा। कुंडली साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, यहां पे फेलियर की गुंजाइश 1% भी नहीं है। बार बार तंबी कर रहा हूं कुंडली साहब को, कबीना को, जहां हमारी दोस्ती है, जहां हमारी सपोर्ट है, वहां आपसे बहुत क्वेश्चनिंग होगी। आपसे शायद इतनी क्वेश्चनिंग होगी जो इलेक्टेड से नहीं हुई, क्योंकि अब आपका जो बेड़ा है उसमें फेलियर इज नो ऑप्शन।
1: फैसल करीम कुंडी परफॉर्म न कयो तो तब्दील थी वेंदो, नाकामी जी का भी गुंजाइश ना है, रुगो कामयाबी घुर्बल है। सेनेटर फैसल वाबडा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी के वार्निंग डींदे चो तो फैसल करीम कुंडी की कारकर्दगी जो जायजो वठंदो रहंदस, नाकामी जो को भी जवाब न बुधंदस। 180 डी घना अहम आन, ही पार्ट 1 है, पार्ट 5 भी थी सके तो। जमहूरियत के बचाने लाय बच्चा जमहूर आनो पौ, पाकिस्तान के रिबोट करण वो ऑप्शन डिसी रो आया।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनात, आपको बिना चिप चिप के निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
4: का सच गीतम 91.6 सिंध जो आवाज़ बदलता रहूँ।